0: ଅଳ୍ପ ଜିନିଷ ସହ ଜୀବନ ଜୀଇଁବା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି, କହିଛନ୍ତି ପ୍ଲାଟୋ। ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ବଲପୁର, ସମୟ ସକାଳ 6 ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣନ୍ତୁ, ରିଲେ କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀ କେନ୍ଦ୍ରରୁ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो देशों फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के शहर नीस पहुंच गए हैं। G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा श्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारतीय समुदाय के लोगों ने होटल नेग्रेस्को में श्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत सत्कार किया।
2: नीस में प्रधानमंत्री के स्वागत में फ्रांसीसी और इतालवी कलाकारों ने कथक, ओडिसी और भारतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किए। आज दोपहर प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रदर्शित करने वाले प्लेटफॉर्म भारत इनोवेट्स लॉन्च करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के नीस में चल रहे प्रवासी भारतीयों का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने उनके स्वागत सत्कार को अविस्मरणीय बताया। उन्होंने कहा कि भारत से मीलों दूर होने के बावजूद स्वदेश के प्रति प्रवासियों के संबंध में मजबूती आई है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग द्वारा ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा राज्य में मंडी के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से लगभग 12 किलोमीटर दूर रेहरधर शाखा तक पहुंचने में 2 घंटे से अधिक का समय लगता है। ड्रोन सेवा से ये समय घटकर मात्र 60 मिनट हो जाएगा। संचार मंत्रालय ने बताया कि विभाग ने अगले 2 से 3 महीने में हिमाचल प्रदेश और असम में लगभग 150 स्थानों पर ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की योजना बनाई है। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन सम्पन्न हो गया है। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सम्मेलन में 4 नई संस्थागत पहलों की घोषणा की गई। इसरो के चेयरमैन वी नारायणन ने बताया कि उन्होंने परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर एक एडवांस आर्टिफिशियल हीटिंग सिस्टम विकसित किया है जो लूनर लैंडर को चंद्रमा के बेहद ठंडे मौसम से बचा सकता है। बेंगलुरु में इसरो प्रमुख ने बताया कि अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर ऐसा लूनर लैंडर विकसित करने पर काम करेगा जो चंद्रमा पर 200 दिन तक काम कर सके। आर्टिफिशियल हीटर वाला ये लैंडर चंद्रमा के कठोर मौसम में भी काम कर सकेगा। उन्होंने कहा कि इससे भविष्य के मिशनों में लंबे समय तक सहायता मिलेगी। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले आयुष मंत्रालय आज मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान और हैबिल्ड के सहयोग से वैश्विक ऑनलाइन योग कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। ये सत्र सुबह 6:15 से 7:35 तक चलेगा। 130 से अधिक देशों के इस कार्यक्रम में भाग लेने की आशा है। आयुष मंत्रालय ने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य योग में रुचि रखने वाले विश्व भर के लोगों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर साथ लाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है। इच्छुक लोग 1800-315-7008 पर मिस कॉल देकर कार्यक्रम के लिए पंजीकरण करा सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर हो जाने की आशा व्यक्त की है। इसके तुरंत बाद होर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में आशा व्यक्त की कि वार्ता सफल रहेगी, यदि ऐसा नहीं होता तो अंतिम विकल्प भी है। इस बीच ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघेई ने कहा है कि तुरंत किसी समझौते पर हस्ताक्षर की उम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा कि ये समझौता आज नहीं होगा, हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में ऐसा संभव हो। भारत ने कल रात हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 3 एकदिवसीय मैचों की क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। भारत ने 22 ओवर और 5 गेंद में ही 195 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। श्रृंखला का दूसरा मैच 17 जून को लखनऊ में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: सुनुथिले हिंदी रे संवाद रिले कलु आकाशवाणी दिल्ली केन्द्ररु। आपण माने कार्यक्रम सुनुछंती आकाशवाणी संबलपुर केन्द्ररु। श्रोता बंधु, प्रत्येक नुआ प्रभात नेइ आसे गोटे नुआ आशा, नुआ संभावना एवं नुआ उत्साह। जीवनर व्यस्तता भितरे मनकु टिके शांति, आत्माकु पवित्रता एवं हृदयकु भक्तिर स्पर्श देबा उद्देश्य नेइ आरंभ करुछु आजिर भक्ति संगीतर विशेष कार्यक्रम वंदना। शुणन्तु कार्यक्रमर प्रथम गीतटिकु। गीतटिकु गाइछन्ति गौतम राय, गीत रचना युधिष्ठिर मेहर, संगीत देइछन्ति शंकर प्रसाद प्रधान।

0: दिनपर्यन्तं चन्द्रे कार्यं भवेत्। कृत्रिमतापनप्रणाल्या उक्तम् एतत् ज्ञानं चन्द्रस्य कठोरजलवायुपरिस्थितिषु अपि कार्यं करिष्यति तथा च भविष्ये दीर्घकालिक चन्द्र अन्वेषण अभियानेषु अपि सहायकं भविष्यति। केन्द्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हिमाचल प्रदेशे डाक विभागस्य ड्रोन आधारित डाक परिवहन सेवायाः शुभारंभम अकरोत्। एषा सेवा मंडी प्रधान डाक कार्यालयात् रेहर धारा शाखा डाक कार्यालय पर्यन्तं प्रवृत्ता। अमेरिका देशस्य राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्पः उक्तवान् यत् ईरान देशेन सह युद्ध समापन सम्बद्धस्य सन्धिपत्रे अद्य हस्ताक्षरं सम्भाव्यते। तेन उक्तं यत् अस्य सन्धेः लक्ष्यं ईरानस्य परमाणु अस्त्रेभ्यः दूरीकरणमस्ति। एकदिवसीय पुरुष क्रिकेट श्रृंखलायाः प्रथम स्पर्धायां भारतेन अफगानिस्तानदलं पराजितम्। हिमाचल प्रदेशस्य धर्मशाला नगरे प्रथम एकदिवसीय क्रिकेट स्पर्धायां भारतेन अफगानिस्तानदलं सप्त क्रीडक पुरस्सरं पराजितम्। इति वार्ताः।
1: रिले कलु आकाशवाणी दिल्ली केन्द्ररु आकाशवाणी संबलपुर वर्तमान शुणन्तु आजि प्रसारित हेबाकु थिबा कार्यक्रम संपर्कित सूचना।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन भी करेंगे। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने कहा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन चंद्रमा पर 200 दिन तक काम करने में सक्षम लैंडर विकसित कर रहा है। मौसम विभाग ने कहा, दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2-3 दिन में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ पहुंचने की संभावना। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा, ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होंगे। इसके बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खोल दिया जाएगा। भारत ने धर्मशाला में वर्षा से बाधित पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया और ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम बर्मिंघम में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस शहर पहुंच गए हैं। श्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया।
1: नीस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारतीय समुदाय के लोगों ने भव्य स्वागत किया। प्रधानमंत्री के स्वागत में फ्रांसीसी और इतालवी कलाकारों ने कथक, ओडिसी और भरतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किए। आज दोपहर प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रदर्शित करने वाले प्लेटफॉर्म भारत इनोवेट्स लॉन्च करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप के साथ साथ वैश्विक निवेशक, CEO और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। इसके अतिरिक्त दोनों नेता टेक्नोलॉजी, रक्षा, इनोवेशन और रणनीतिक मामलों जैसे क्षेत्रों में सहयोग के लिए द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। नीस फ्रांस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने नीस के प्रवासी भारतीयों का आभार व्यक्त किया है। श्री मोदी ने उनके स्वागत को अविस्मरणीय बताया। फ्रांस के बाद प्रधानमंत्री स्लोवाकिया जाएंगे और वहां के शीर्ष नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा मिलेगी।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो ये स्लोवाकिया के लिए यात्रा है, ये बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा है क्योंकि यह किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी, तो इसलिए हम सभी लोग काफी उत्साहित हैं इस यात्रा को लेकर। हमें पूरी उम्मीद है कि इससे न केवल राजनीतिक संबंध प्रगाढ़ होंगे बल्कि आर्थिक, रक्षा और पीपल टू पीपल रिलेशंस को भी बहुत अधिक बढ़ावा मिलेगा।
0: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद तथा स्टार्टअप उद्यमिता सम्मेलन में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर ने चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ ऐसा लैंडर तैयार कर रहा है जो चंद्रमा पर 200 दिन तक सक्रिय रहेगा। इस लैंडर में प्रतिकूल मौसम में काम करने वाले कृत्रिम हीटर लगे होंगे। श्री नारायण ने बताया कि इसरो और सीएसआई

सरकार ने तकनीकी सहयोग के 40 क्षेत्रों की पहचान की है। इनमें से 17 को पहले चरण में कार्यान्वयन की स्वीकृति मिल चुकी है। ऐसी ही अनुसंधान साझेदारी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के साथ भी की जा रही है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा राज्य में मंडी के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर केवल 7 मिनट रह जाएगा। संचार मंत्रालय ने बताया कि विभाग अगले 2-3 महीने में हिमाचल प्रदेश और असम में लगभग 150 स्थानों पर ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम नागरिकों के जीवन में सुगमता लाने के सरकार के कार्यों पर जानकारी देंगे।
4: पिछले 12 वर्षों में किए गए सुधारों ने देश में विश्वास की नई नींव रखी है। चाहे वह सुधार जीएसटी, फेसलेस टैक्स व्यवस्था या डिजिटल इंडिया से जुड़ा हो, हर पहल ने नागरिकों को यह एहसास कराया है कि वे भी राष्ट्र निर्माण में भागीदार हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में आयकर स्लैब और कर दरों में किए गए व्यापक बदलाव से सभी करदाताओं को लाभ मिला है। नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर कोई आयकर नहीं देना होता है। कर प्रणाली में किए गए सुधारों की वजह से आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या वित्त वर्ष 2022 में 6.9 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में 9.2 करोड़ हो गई है। नई पीढ़ी के जीएसटी ने कर व्यवस्था को सरल बनाया है। अप्रैल 2026 में जीएसटी संग्रह 2,42,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जो अब तक का सबसे अधिक है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में फिल्म निर्माता और वितरक समीर दीक्षित ने कहा कि जीएसटी नरेंद्र मोदी सरकार के सबसे बड़े नीतिगत फैसलों में से एक है।
5: जीएसटी को हमारे देश में लागू हुए अब 10 साल के आसपास हो गए हैं और हमने एक बहुत बड़ा इस दिशा में प्रगति की है।
4: नरेंद्र मोदी सरकार ने शासन और नीतियों में तकनीक का व्यापक उपयोग किया है। केवल 22 महीनों में 5G सेवाएं देश के लगभग सभी जिलों तक पहुंच चुकी है। इंटरनेट डेटा की कीमत में 97% से अधिक की कमी आई है। भारत नेट योजना के तहत 7,22,000 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जा चुकी है। भारत 6G तकनीक के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की ओर तेजी से बढ़ रहा है। लक्ष्य है कि 6G से जुड़े वैश्विक पेटेंट में भारत की हिस्सेदारी लगभग 10% हो। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में महेंद्र तिवारी ने कहा कि डिजिटल इंडिया दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है।
6: डिजिटल इंडिया इज नो मोर अ कॉन्सेप्ट।
7: डिजिटल इंडिया अब सिर्फ एक सोच नहीं रह गया है, बल्कि ये एक यात्रा है। हम हर दिन आगे बढ़ रहे हैं और दुनिया को ये साबित कर रहे हैं कि भारत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। डिजिटल हाईवे किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं, खासकर हमारे जैसे देशों के लिए।
4: पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के विकास के सपनों को बड़े पैमाने पर साकार करने का प्रयास किया है और लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया है। ईज ऑफ लिविंग अब केवल एक नारा नहीं बल्कि सरकार के कामकाज का मूल मंत्र बन चुका है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि समझौता होने के तुरंत बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने आशा व्यक्त की कि वार्ता सफल रहेगी, यदि ऐसा नहीं होता है तो अंतिम विकल्प भी उपलब्ध है।
8: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रस्तावित समझौते की तुलना 2015 की संयुक्त कार्य योजना से भी की। उन्होंने कहा कि उनके प्रस्तावित समझौते से ईरान के परमाणु हथियारों पर पूरी तरह अंकुश लगेगा। उन्होंने दावा किया कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर प्रभावी रोक लगाई गई है और शेष परमाणु सामग्री बाद में नष्ट कर दी जाएगी। उधर ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागई ने कहा कि तुरंत किसी समझौते पर हस्ताक्षर की उम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा कि यह समझौता आज नहीं होगा, हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में ऐसा संभव हो। ईरान के लोक प्रसारक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग के अनुसार श्री बागई ने दूसरे पक्ष की विसंगति के कारण जारी वार्ता प्रक्रिया से तुरंत कोई उम्मीद जाहिर नहीं की। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
3: ईरान ने दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खमनेई के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। खमनेई के अंतिम संस्कार के विधि विधान 4 और 5 जुलाई को तेहरान के इमाम खुमैनी इबादत स्थल पर होंगे। इसके बाद 6 तारीख को तेहरान और 7 तारीख को पवित्र शहर कौम में विधि विधानों के बाद उन्हें 9 जुलाई को मशहद के इमाम रजा स्थल में दफनाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान की टीम 24 ओवर और 5 गेंद में केवल 194 रन पर सिमट गई। जवाब में भारत ने 22 ओवर और 5 गेंद में ही 195 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। इससे पहले लगातार वर्षा के कारण मैच 25-25 ओवर का कर दिया गया। 3 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच 17 जून को लखनऊ में खेला जाएगा। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच बर्मिंघम के एजबेस्टन में भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। भारत पाकिस्तान के साथ अब तक हुए 16 में से 13 मैच जीत चुका है। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुद्दुचेरी और कराईकल के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में पहुंचने की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
9: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
3: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
7: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। जनसत्ता की सुर्खी है, फ्रांस पहुंचे मोदी, G7 में ट्रंप से भी मिलेंगे। पत्र के अनुसार वैश्विक दक्षिण की आकांक्षाओं को आवाज देगा भारत। लोकसत्ता ने प्रधानमंत्री के हवाले से लिखा है, युवा शक्ति भारत के भविष्य को दिशा दे रही, युवाओं की उपलब्धियां विकसित भारत के निर्माण में मजबूत नींव बन रही। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, पहली बार IMA से पास आउट 9 महिला कैडेट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, इतिहास में मील का पत्थर, 5 महिला कैडेट्स वायुसेना में भी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, अब ICBM मिसाइलों को भी मार गिराएगा भारत, बना 5वां देश। नेवल एंटीशिप मिसाइल का भी पहला सफल परीक्षण। पंजाब केसरी के अनुसार सीमावर्ती जिलों में डेमोग्राफी बदलाव पर सरकार सख्त। गृहमंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय समिति को जनसांख्यिकी बदलावों का अध्ययन करने का निर्देश दिया। सियासी तूफान शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है, रात 2 बजे अभिषेक बनर्जी के घर छापा, पुलिस बोली 4 घंटे खड़े रहे। पंजाब केसरी ने असली तृणमूल का सवाल देते हुए लिखा है, अपने आप ये अजूबा है कि 4 मई को विधानसभा चुनाव हारने के बाद तृणमूल कांग्रेस के 80 में से 60 विधायकों ने अलग गुट बना लिया और विधानसभा अध्यक्ष ने अलग गुट को मान्यता भी दे दी। देशबंधु की सुर्खी है, गंभीर आर्थिक और ऊर्जा संकट से जूझ रहा पाकिस्तान, असीम मुनीर की नीतियों से हो रहा नुकसान, इस्लामाबाद में यौन उत्पीड़न और अपहरण के मामले बढ़े।
3: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से बातचीत करेंगे। दोनों नेता भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन भी करेंगे। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने कहा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन चंद्रमा पर 200 दिन तक काम करने में सक्षम लैंडर विकसित कर रहा है। मौसम विभाग ने कहा, दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2-3 दिन में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ पहुंचने की संभावना। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा, ईरान के साथ युद्ध समाप्त होने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होंगे। और भारत ने धर्मशाला में वर्षा से बाधित पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
10: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस।
11: Prime Minister Narendra Modi to hold talks with French President Emmanuel Macron and jointly inaugurate Bharat Innovates event in Nice today. Indian Space Research Organization developing long-life moon landers capable of surviving up to 200 days, says ISRO Chairman V. Narayanan. IMD says conditions are favourable for further advance of southwest monsoon into Karnataka, Telangana, Andhra Pradesh, Odisha and South Chhattisgarh during next 2 to 3 days. US President Donald Trump claims deal to end war with Iran will be signed today and Strait of Hormuz will be opened to all immediately afterwards. India beat Afghanistan by 7 wickets in rain-affected first one-day international cricket at Dharamshala. And in ICC Women's T20 World Cup, India to begin their campaign against arch-rivals Pakistan in Birmingham this evening. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has arrived in Nice, France on the first leg of his two-nation visit to France and Slovakia. During his stay in France, he will join French President Emmanuel Macron in jointly inaugurating Bharat Innovates and hold bilateral talks with him on key areas of cooperation and global issues ahead of the upcoming G7 summit. Mr. Modi will subsequently travel to Slovakia for bilateral engagements with the Slovak leadership. At a community reception held at the iconic Hotel Negresco yesterday, a large gathering of the Indian diaspora accorded a warm and enthusiastic welcome to the Prime Minister. Prime Minister Modi interacted warmly with members of the community and witnessed colourful cultural performances featuring classical Indian dance forms including Kathak, Odissi, Bharatnatyam presented by French and Italian artists.

0: आकाशवाणी संबलपुर हेलो अनुरोध कार्यक्रम हेलो
1: हेलो हेलो
0: हेलो हाँ आज्ञा नमस्कार
1: हेलो
0: हाँ आज्ञा नमस्कार
1: नमस्कार नमस्कार
0: आपणकर परिचय देबे के कहौछन केनु कहौछन
1: मय विप्रला कहौने डबलंग सोनपुर जिल्ला रो
0: आज्ञा आपणकु हमर कार्यक्रम के बहुत बहुत स्वागत आपण होछन आज हमर पहला कलर
1: गंगा
0: जमुना सरस्वती
1: चुड़िया
0: खनकी सुनबा के चाहबे गीत टाके गाइछन साधना सरगम आ कहो ना गया अपन केंता अच्छा
1: और ये भी बहुत है ना मालूम दीजिए
0: आ गया कारण ठंडा तो नहीं गला क्या है
1: हाँ ठीक है खराल लगी थी ये जा रही थी मालूम
0: आ गया आ गया ऐसे तो आधे मौसमी आसी गला ना ये तो करो ठीक है पागो ठंडा है जीबा
1: हाँ
0: उत्तप्त पृथ्वी थिला से टा यादे शांत है जीबा ना कारण कहो जान ठीक अच्छे आ गया सुन मैं अपन कर पसंद रह गीत के आज्ञा आज्ञा ठीक अच्छे सब श्रोता मान को आज्ञा आज्ञा बहुत बहुत धन्यवाद आ सुनी पको आज्ञा आज्ञा ठीक अच्छे आज्ञा सुनी पको अपन कर पसंद रह गीत के
1: हाँ मारो नमस्कार
0: नमस्कार आज्ञा।

0: आकाशवाणी संबलपुर हेलो अनुरोध कार्यक्रम हेलो
1: नमस्कार मैडम, मैं चिरमिरी कुआसा कालरी जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ।
0: आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम को। बहुत दूर से आप हमको फोन किए हैं, इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपको भी धन्यवाद, फोन लगा आपसे बातचीत हो रहा है, खुशी बढ़ रहा है मैडम। और स्मृति मनन के साथ अपने पसंद के गीत बताता हूँ। फिल्म का नाम है सर, SIR सर
0: जी,
1: और गीत की बोल है सुन सुन सुन बरसात की धुन सुन, गायक कुमार सनी।
0: बहुत सुंदर गीत।
1: सबसे पहले गीत आप निर्देशक साहब को, भारत श्रोताओं को, आकाशवाणी संबलपुर में जुड़े सभी लोगों को, आपके परिवारजन को, रिश्तेदारों को, अपनी सहेलियों को, आकाशवाणी संबलपुर में जुड़े सभी दर्शक भाई बहनों को और स्टाफ कर्मचारियों को, हेलो एक्टर रेडियो श्रोताओं को, पूरे भारत श्रोता को डिटेल करो मैडम। इस गीत को पूरा सुनाइएगा
0: जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और सुन लीजिए आपका पसंद का गाना
1: जी मैडम।
0: जी धन्यवाद।

0: आकाशवाणी सम्बलपुर हेलो अनुरोध कार्यक्रम हेलो
1: आज्ञा नमस्कार।
0: नमस्कार आज्ञा किए कहुचन केनु कहुचन
1: मु सुरेन कुमार साहू आज्ञा गांधी टिकरा पोस्ट ऑफिस कोलता टुकरा डिस्ट्रिक्ट बरगड़ टू कहू जे
0: आपन को बहुत बहुत स्वागत आज्ञा आ कहुन आज्ञा आपन केनता अछन
1: मु तो बढ़िया अछे आज्ञा आपन केनता अछन कहुन तो
0: आमे माने भी बहुत भल अछु आज्ञा आ
1: आपन का परिचय के दो
0: मोन ना होचे स्वीटी पाढ़ी उपस्थापिका स्वीटी पाढ़ी है मुई आज्ञा आओ आज्ञा आज्ञा आम आगुरु भी कथा है चा आज्ञा आ कौन आज्ञा आप कौन करसन
1: मु आज्ञा अमर कसा पितळ काम करू थली
0: आज्ञा आज्ञा
1: वर्तमान अमर रोजगार ना चलबा बले वयस भी हे गला ना
0: आज्ञा आज्ञा आज्ञा
1: तो अमर कोडिको वृत्ति भी लोप पाई जाऊ छी
0: हेटा तो आए आज्ञा किंतु केही बुझवान नै जे इटा अमर परंपरा लागि बहुत जरूरी है ना काणा कहुचन कंसा बासन साइंटिफिकली भी व्यवहार करवाटा बहुत भल आज्ञा आज्ञा तो कहू
1: ना ये लोक एकर चाहिदा आस्ते आस्ते कमी होचे ना डिमांड ले लोक काम करवार लागि माने कोळिक वृत्तिटा लोप पाई जाउचे अमर
0: आज्ञा हेटा परे ठीक अछे आज्ञा कहुन आपण आज किन गीत सुनबा के चाहुचन
1: आज देबे आज्ञा मोर नसीब अपना अपना रो
0: आज्ञा
1: भला है बुरा है जैसा भी है मेरा पति मेरा देवता है
0: बहुत सुंदर गीतटे बाजले आज्ञा आ बहुत सुंदर करी गाउचन भी ना कण आज्ञा कहा के डेडिकेट करमा के
1: डेडिकेट तो करमा आज्ञा आपन को आगो करमा
0: बहुत बहुत धन्यवाद आज्ञा
1: तापर आज्ञा हमर आपन को अनुष्ठान रे जतकी अछन कर्मकर्ता समस्त को डेडिकेट हेबे
0: आज्ञा
1: आ हम तेजस्वी मिश्र आज्ञा अछन आपन को अनुष्ठान रे हमर पुरना हमर माने
0: आज्ञा
1: आज्ञा बेसी करी
0: आज्ञा आज्ञा अच्छा
1: आ तापर हमर घरे अछन आज्ञा दुई छ सपना सोनाले
0: आज्ञा
1: नाते नात्या आ हमर मैडम अछन कोंतोरिन मैडम
0: आज्ञा तांको स्पेशल डेडिकेट काई गीतटा
1: आज्ञा
0: आपणकर मिसेस को एटा स्पेशल डेडिकेट के
1: गीतरे नाय कोले आज्ञा केनते बा आगो मिसेस के ना
0: आज्ञा आज्ञा
1: आ तांगो नाय कोले आज्ञा मते राज हबे ना घरे
0: आज्ञा आज्ञा ठीक कहो जान
1: तापरे आज्ञा मोर अछन समरपुर नानी अछे सरोज कुमारी चाहो
0: आज्ञा
1: न हमर पढान पढान अछे भाई अछे हमर एनवालेंड सुशांत कुमार साहू भाई बहु अछन दीप्ति साहू
0: आज्ञा
1: आओ अछन अमर डेंशन दादा अछन भी अमर ननुपालिन
0: आज्ञा आज्ञा आज्ञा सब परिवार
1: अपन आया पांच गोचन अमर गार राजकृष्ण महाराणा अमर ते नाने अजर रत्न नाने सता जे जियो इकियो जे अमर
0: आज्ञा

0: ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ବଲପୁର ହେଲୋ ଅନୁରୋଧ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲୋ
1: ହ୍ୟାଲୋ
0: ହେଲୋ
1: ଦିଦି
0: ହଁ ଜି ନମସ୍ତେ କହାଁ ସେ ବାତ କର ରହେ ଔର କୌନ ବାତ କର ରହେ ଜି ଜି ଫିର ସେ ବୋଲିଏ ଆପଣ ପରିଚୟ ଫିର ସେ ଦିଜିଏ ବହୁତ ଦୂର ସେ ଆପ ହମସେ ବାତ କର ରହେ ହେଁ ତୋ ବୋଲିଏ ଆପ କେସେ ହେଁ बहुत बहुत अच्छा आपके यहाँ मौसम कैसा है
1: अभी तो बारिश का सीजन चल रहा है बरसात का सीजन तो सुबह भी बारिश हुआ था अभी अभी बारिश होने का मतलब ये है
0: अच्छा अच्छा
1: उम्मीद है
0: अच्छा अच्छा तो ठीक है बोलिए आप कौन सा गीत आप सुनना चाहेंगे आज
1: ये है जलवा फिल्म का आंखें प्यारी है ये गाना सुना दीजिए
0: ठीक है बहुत सुंदर गीत आप चूज किए हैं तो बोलिए किसी को डेडिकेट करना चाहेंगे क्या
1: दोस्तों के नाम डेडिकेट करना है अमर बसुमतारी विमल बसुमतारी योगेंद्र रंगपी रमेश पात्र अरुण पात्र अंजलि बसुमतारी
0: जी जी
1: चंद्रकांत टाय सुनाराम बालुंग विनोद गोगोई और बहुत सारे जो अभी सुन रहे हैं सभी के लिए डेडिकेट रहेगा
0: जी जी ठीक है इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका पसंदीदा गाना हम डेडिकेट कर रहे हैं सबको और सुन लीजिए आपका पसंद का ये गाना
1: जी जी जी बहुत बहुत धन्यवाद
0: ठीक है नमस्ते।

0: आकाशवाणी संबलपुर, हेलो अनुरोध कार्यक्रम। हेलो,
1: हेलो, नमस्ते दीदी, प्रणाम।
0: नमस्ते जी, आप कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: मैं कोटवा साजा छत्तीसगढ़ जिला बेमेतरा से राम स्वरूप गुप्ता बोल रहा हूँ दीदी।
0: जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम को।
1: जी दीदी,
0: और बोलिए, आप कैसे हैं?
1: सब बढ़िया दीदी, आप लोग?
0: हम भी बहुत अच्छे हैं। और आप क्या करते हैं?
1: तीर्थ यात्रा काम करता हूँ दीदी, सवारी कर चक्कर की तीर्थ यात्रा घुमाने के लिए जाता हूँ।
0: अरे, आप तो बहुत पुण्य के काम कर रहे हैं।
1: जब आप ही लोग आशीर्वाद दीदी।
0: जी जी जी ठीक है, फिर बोलिए, आप कौन सा गीत आज सुनना चाहेंगे?
1: प्यासा सावन का है, मेघारे मेघारे सुरेश वाड़ेकर जी की आवाज है, और इसमें जितेंद्र और मौसमी चटर्जी जी की फिल्म है।
0: जी जी जी बहुत अच्छा गीत आप चूज किए हैं। और किसी को डेडिकेट करना चाहेंगे क्या?
1: हाँ दीदी, पहले तो संबलपुर रेडियो जो आकाशवाणी के आरजे बहन लोग, आप लोग आरजे भैया लोग हैं, उसके बाद मेरा परिवार बड़ल का प्रियस गुप्ता, उसके दो लड़के श्रेयांश गुप्ता शशांक गुप्ता, लड़के सेकंड नंबर प्रीति जैन, उसके दो लड़के अनंत जैन हंसित जैन, छोटा लड़का विवेक गुप्ता, पत्नी के नाम हीरा देवी। तो उसके बाद रेडियो संबलपुर जितने भी श्रोता भाई बंधु उसके साथ इस गीत को सुनेंगे के लिए।
0: जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। और सबके साथ मिलकर आइए सुनते हैं आपका ये पसंदीदा गाना।
1: जी जी धन्यवाद,
0: धन्यवाद, नमस्कार।

0: ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ବଲପୁର ସମୟ ସକାଳ 10:00 ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣନ୍ତୁ, ରିଲେ କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀ କେନ୍ଦ୍ରରୁ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस पहुंच गए हैं। श्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी

0: का भव्य स्वागत किया गया।
1: नीस में प्रधानमंत्री के स्वागत में फ्रांसीसी और इतालवी कलाकारों ने कथक, ओडिसी और भरतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किए। आज दोपहर प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रदर्शित करने वाले प्लेटफॉर्म भारत इनोवेट्स लॉन्च करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप के साथ साथ वैश्विक निवेशक, CEO और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने नीस के प्रवासी भारतीयों का आभार व्यक्त किया है। श्री मोदी ने उनके स्वागत को अविस्मरणीय बताया। फ्रांस के बाद प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाकिया जाएंगे और वहां के शीर्ष नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा मिलेगी।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो ये स्लोवाकिया के लिए यात्रा है, ये बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा है, क्योंकि यह किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी। तो इसलिए हम सभी लोग काफी उत्साहित हैं इस यात्रा को लेकर। हमें पूरी उम्मीद है कि इससे न केवल राजनीतिक संबंध प्रगाढ़ होंगे, बल्कि आर्थिक, रक्षा और पीपल टू पीपल रिलेशंस को भी बहुत अधिक बढ़ावा मिलेगा।
0: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ ऐसा लैंडर तैयार कर रहा है जो चंद्रमा पर 200 दिनों तक सक्रिय रहेगा। इस लैंडर में प्रतिकूल मौसम में काम करने वाले कृत्रिम हीटर लगे होंगे। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा राज्य में मंडी जिले के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर मात्र 7 मिनट हो जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि समझौता होने के तुरंत बाद होर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने आशा व्यक्त की है कि वार्ता सफल रहेगी। यदि ऐसा नहीं होता है तो अंतिम विकल्प भी उपलब्ध है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा के फसल उत्सव राजा के अवसर पर देशवासियों, विशेष रूप से ओडिशा वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने राजा को मानसून के स्वागत का त्यौहार बताया। उन्होंने कहा कि यह त्यौहार प्रकृति और समाज के गहरे जुड़ाव को दर्शाता है। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले समग्र स्वास्थ्य, मानसिक आरोग्य और प्रकृति के साथ सामंजस्य को बढ़ावा देने में योग की भूमिका का उल्लेख किया है। कजाकिस्तान के दुशांबे में योग सत्र में भाग लेते हुए उन्होंने कहा कि योग उन शाश्वत मूल्यों को प्रतिबिंबित करता है जो विश्व भर में लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने विश्व रक्तदाता दिवस पर लोगों से स्वैच्छिक रक्तदान की अपील की है। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रक्तदान किसी व्यक्ति को नया जीवन देने का सर्वाधिक प्रभावी और पावन अवसर है। इस वर्ष विश्व रक्तदाता दिवस की थीम है, मानवता की एक बूंद रक्तदान करें, जीवन बचाएं। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत का सामना चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से होगा। मैच बर्मिंघम के एजबेस्टन में भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से खेला जाएगा। भारत पाकिस्तान के साथ अब तक हुए 16 में से 13 मैच जीत चुका है। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिक्काल के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आज बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: सुनुथिली हिंदी ते संवाद रिले कोलो आकाशवाणी दिल्ली केंद्र नो आपण माने कार्यक्रम सुनुचन आकाशवाणी संबलपुर केंद्र नो।
4: NDA सरकारक 12 वर्ष पूर्ति अवसर रे आकाशवाणी संबलपुर प्रस्तुत करिछि विशेष कार्यक्रम 12 वर्ष भरिछि हस। उपस्थापना अभिषेक शर्मा, संपादना ସୌଭାଗ୍ୟ କୁମାର ରଥ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସବ୍କା ସାଥ ସବ୍କା ବିକାଶ ସବ୍କା ବିଶ୍ୱାସ ଔର୍ ସବ୍କା ପ୍ରୟାସ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଉପରେ ଆଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦେଶରେ ଗତ 12 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ଏହି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଗରିବ ଚାଷୀ ମହିଳା ଏବଂ ଯୁବବର୍ଗମାନଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ଏବଂ ସଶକ୍ତିକରଣ ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ବଲପୁର ବିଗତ 12 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ଉପରେ ଆଧାରିତ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୃଙ୍ଖଳା ପ୍ରସାର କରୁଛି। ଆଜିର ଅଙ୍କରେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗରିବଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ନିଆଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। ଗତ 12 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗରିବମାନଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ଏବଂ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଗରିବମାନଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଗ୍ରାମୀଣ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗ୍ରାମୀଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆର୍ଥିକ ରୂପରେ ଦୁର୍ବଳ ପରିବାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ 4 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଘର ବଣ୍ଟନ କରାଗଲା। ସେହିପରି ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଅନ୍ନ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାରା ଦେଶରେ 81 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣା ରାସନ ଦିଆଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଶାର କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଇନ୍ଦ୍ରମଣି ନାୟକ କହିଲେ ଯେ ଏହି ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନେକ ଲାଭ ମିଳୁଛି।
5: ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯାହା କରିଛନ୍ତି ତାହା ଆମ ପରିବାରରେ ଥିବା 5 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ପିଛା 5-5 କିଲୋଗ୍ରାମ ରାସନ ମିଳୁଛି। ଏହା ପାଇବା ପାଇଁ ଆଗରୁ ଅନେକ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ବଞ୍ଚିପାରୁଛୁ।
4: ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ବୃହତ ସାର୍ବଜନିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯୋଜନା ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଭାବୀ ପରିବାରମାନଙ୍କୁ 5 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଦିଆଯାଉଛି। ସେହିପରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ ଔଷଧି କେନ୍ଦ୍ରମାନଙ୍କରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶସ୍ତା ଦରରେ ଉନ୍ନତମାନର ଔଷଧ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ସାରା ଦେଶରେ 10,82,00,000 ଲୋକଙ୍କୁ ଏହି ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ବାରାମୁଲ୍ଲାର ଫୟାଜ ଅହମ୍ମଦ କହିଲେ ଯେ ଏହି ଯୋଜନା ବିପଦକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ।
6: ଯେବେଠୁ ମୋଦିଜୀ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଦାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, ସେବେଠାରୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହାଦ୍ୱାରା ଶସ୍ତା ଦରରେ ଉନ୍ନତରୁ ଉନ୍ନତର ଚିକିତ୍ସା ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସମୟରେ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇପାରୁଛି ଏବଂ ତାକୁ ଆଉ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ିରେ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ମୋଦିଜୀ ଇତିହାସର ସବୁଠୁ ଭଲ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସଂରକ୍ଷକ।
4: ପାରମ୍ପରିକ ଇନ୍ଧନ ଯଥା କୋଇଲା ଏବଂ କାଠର ଧୂଆଁରୁ ହେଉଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାରୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ। ଏହି ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ 10,55,00,000ରୁ ଅଧିକ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ LPG ଯୋଗାଇ ଦିଆଗଲା। ସେହିପରି ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ଉଠା ବ୍ୟାପାରୀମାନଙ୍କୁ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା PM ସ୍ୱନିଧି ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ 1,12,00,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଋଣ ଦିଆଯାଇଛି। ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରିଛି। 2015 ଶତକଡ଼ା 19% ଲୋକ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଲାଭ ନେଇପାରୁଥିଲା ବେଳେ 2025 ତାହା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଶତକଡ଼ା 64%ରୁ ଅଧିକ ହୋଇସାରିଛି। ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରୟାସ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାୟ 25 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଜନକଲ୍ୟାଣ ଏବଂ ସମନ୍ୱୟ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ଅଟେ। ଏନ୍ଡିଏ ସରକାରଙ୍କ 12 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ବଲପୁର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 12 ବରଷ ଭରିଛି ହସ। ଉପସ୍ଥାପନା ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ସମ୍ପାଦନା ସୌଭାଗ୍ୟ କୁମାର ରଥ।

श्रोता बंधु इनु शेषला हिंदी सिनेमा गीतर कार्यक्रम इति आपण मैंने सुनले दिल तेरा दीवाना सिनेमार किछ गीत गीत मानकु लेखिथिले श्यामराज आर लुबना खान संगीत थे सजेथिले आदेश श्रीवास्तव गीत मानकु गाइथिले उदित नारायण अलका याग्निक कुमार सानू आर अभिजीत इनु शेषला हिंदी सिनेमा गीतर कार्यक्रम।

0: ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ବଲପୁର ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣୁଛନ୍ ମିଡିୟମ୍ ୱେବ୍ 317.5 meter 945 kHz ଆର୍ ଏଫ୍ଏମ୍ 101 ମେଗାହର୍ଜ ଥି ଇହାଦେ ଶୁଣୁନ୍ ହିନ୍ଦୀ ସମ୍ବାଦ ରିଲେ କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀ କେନ୍ଦ୍ର ନୁ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस पहुंच गए हैं। श्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। नीस में प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने नीस के प्रवासी भारतीयों के स्वागत को अविस्मरणीय बताया। फ्रांस के बाद प्रधानमंत्री स्लोवाकिया जाएंगे और वहां के शीर्ष नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा मिलेगी।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो ये स्लोवाकिया के लिए यात्रा है, ये बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा है, क्योंकि यह किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी, तो इसलिए हम सभी लोग काफी उत्साहित हैं इस यात्रा को लेकर। हमें पूरी उम्मीद है कि इससे न केवल राजनीतिक संबंध प्रगाढ़

0: होंगे, बल्कि आर्थिक रक्षा और पीपल टू पीपल रिलेशंस को भी बहुत अधिक बढ़ावा मिलेगा।
1: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ ऐसा लैंडर तैयार कर रहा है जो चंद्रमा पर 200 दिन तक सक्रिय रहेगा। इस लैंडर में प्रतिकूल मौसम में काम करने वाले कृत्रिम हीटर लगे होंगे। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा राज्य में मंडी जिले के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर मात्र 7 मिनट हो जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि समझौता होने के तुरंत बाद हॉर्मुज जल डमरू मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने आशा व्यक्त की है कि वार्ता सफल रहेगी। यदि ऐसा नहीं होता है तो अंतिम विकल्प भी है। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले समग्र स्वास्थ्य, मानसिक आरोग्य और प्रकृति के साथ सामंजस्य को बढ़ावा देने में योग की भूमिका का उल्लेख किया है। तजिकिस्तान के दुशांबे में योग सत्र में भाग लेते हुए उन्होंने कहा कि योग उन शाश्वत मूल्यों को प्रतिबिंबित करता है जो विश्व भर में लाखों लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने विश्व रक्तदाता दिवस पर लोगों से स्वैच्छिक रक्तदान की अपील की है। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रक्तदान किसी व्यक्ति को नया जीवन देने का सर्वाधिक प्रभावी और पावन अवसर है। इस वर्ष विश्व रक्तदाता दिवस की थीम है मानवता की एक बूंद, रक्तदान करें, जीवन बचाएं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा के फसल उत्सव राजा के अवसर पर देशवासियों, विशेष रूप से ओडिशा वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने राजा को मॉनसून के स्वागत का त्यौहार बताया। उन्होंने कहा कि ये त्यौहार प्रकृति और समाज के गहरे जुड़ाव को दर्शाता है। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिककाल के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। 2-3 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में पहुँचने की संभावना है। आईसीसी महिला T20 विश्व कप में आज भारत अपने अभियान की शुरुआत पाकिस्तान के साथ मैच से करेगा। ग्रुप ए का ये मैच बर्मिंघम के एस्बेस्टन में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत अब तक पाकिस्तान को 16 में से 13 मुकाबलों में हरा चुका है। फीफा विश्व कप में स्कॉटलैंड ने 28 साल बाद जीत दर्ज करते हुए हैती को 1-0 से हरा दिया। जॉन मैकगिन के पहले हाफ में किए गए गोल की बदौलत स्कॉटलैंड ग्रुप सी में शीर्ष पर पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी संबलपुर श्रोताबंधु सुनुले हिंदी संवाद रिले करे सुनालु आकाशवाणी दिल्ली केन्द्र न इहादे समय संबलपुरी गीतर कार्यक्रम तो आसुन मूलकर्मा संबलपुरी गीतर कार्यक्रम संगीतर लहर श्रोताबंधु कार्यक्रम पहला गीत के सुनुन कंठशिल्पी नारायण डनसेना आर लेखिछन धरणीधर पटेल।

0: चासिंग को पाई अनन्य पदक्षेप और योजना अपनेछंती लोकंक सरकार चासिंग समृद्धि पाई समृद्ध कृषक योजना सीएम किसान कृषि उद्योग और कामधेनु योजना देछि नूतन शक्ति और नूतन सुजोग
1: समृद्ध कृषक योजना रे चासी भाई भौनी मानंको वर्धित हार रे एमएसपी सीएम किसान योजना रे आर्थिक सहायता मुख्यमंत्री कृषि उद्योग योजना रे आकर्षणीय सब्सिडी मुख्यमंत्री अन्नपूर्ण योजना और मुख्यमंत्री कामधेनु योजना भली उन्नतिमूलक योजना सहित मत्स्य उत्पादन और रप्तानी रे ओडिसा उल्लेखनीय अभिवृद्धि होईछि
0: बुणाकार और कारीगर मानंकु सशक्त करुछि मुख्यमंत्री वरिष्ठ बुणाकार और कारीगर सहायता योजना मुख्यमंत्री बयन शिल्प विकास योजना मुख्यमंत्री रेशम विकास योजना भली लोक कल्याणकारी योजना द्वारा लक्ष लक्ष चासी परिवार हेउछन्ति उपकृत
1: विकासर धारा ओडिसा सारा
2: श्रोताबंधु यहाँ सुनन मोहन सेठकर कंठ थी सुंदर गीतटा लिखिछन जयदेव डंसना।

0: माँ माँ देखों तू इधर राशन कार्ड रे कितने चावल मिले ची
1: अरे बहु इतने चावल कोटु आने लो किए दला
0: किया आउ दबा माँ आमो सरकार दे चंती मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना आरंभ हुई ची परा एबे आमो को मुंडो पीछा 5 किलो नु हो 100 किलो चावल संपूर्ण मागणा रे मिलु ची
1: अरे बा एटा तो भारी भलो कथा सरकार आमो दुख बुझी चंती
2: मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना 3 कोटी रु अधिक ओडिसावासी को मिलु छी अतिरिक्त खाद्य सुरक्षा ओडिसा सरकार आपनक सुख दुख रा साथी
3: श्रोता बंधु यहादे सुनून नवीन किशोर आचार्य कर कंठ थी गीतटा लिखिछन डोल गोविंद बिसी

आकाशवाणी संबलपुर श्रोता बंधु आपण माने कार्यक्रम सुनुछन मीडियम वेव 317.5 मीटर 945 किलोहर्ज आर एफएम 101 मेगाहर्ज थी आपण माने अमर कार्यक्रम के न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल एप्लीकेशन माध्यम थी भिल सुनी पारबे। श्रोता बंधु आसुन यादे मूलकर्मा हिंदी सिनेमा गीतर कार्यक्रम खुला झरका। श्रोताबंधु कार्यक्रम पहला गीत के सुनुन सोनू निगमकर कंठ थी। लेखिछन अमिताभ भट्टाचार्य, संगीत थी सजेछन अजय अतुल, सिनेमा अग्निपथ।

श्रोता बंधु यहादे सुनने गीतटा विशाल मिश्र रूप कुमार राठोड़कर कंठ थी लिखिछन जावेद अख्तर संगीत थी सजाई छन अनुमलिक आर मिथुन सिनेमा बॉर्डर 2।

श्रोताबंधु कार्यक्रम आरंभरे सुनंतु कभी अलविदा ना कहना कथाचित्रर ए गीतटी गीतिकार जावेद अख्तर संगीत निर्देशना शंकर एहसान लय कंठशिल्पी सोनू निगम ओ अलका याग्निक।

0: ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ବଲପୁର ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ସମୟ ଦିନ ଗୋଟାଏ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣନ୍ତୁ, ରିଲେ କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀ କେନ୍ଦ୍ରରୁ।
1: ନମସ୍କାର, ଆକାଶବାଣୀ ସମାଚାର କେ ସାଥ ମୈଁ ସର ଫିରୋଜୀ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ नीस में भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से अधिक भारतीय स्टार्टअप, वैश्विक निवेशक, प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अग्रणी लोग और उद्यमी जुटेंगे। इस दौरान भारत के तेजी से बढ़ते नवाचार तंत्र को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा और प्रमुख क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स की शुरुआत करेंगे। इस कार्यक्रम में दुनिया भर से 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप, निवेशक और टेक्नोलॉजी लीडर्स शामिल होंगे। कार्यक्रम में नवाचार, उद्यमिता और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके बाद दोनों नेता भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा और प्रौद्योगिकी, व्यापार तथा रक्षा ऐसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित भोज के बाद प्रधानमंत्री मोदी अपनी यात्रा के अगले चरण में स्लोवाकिया रवाना होंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: सरकार ने जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर अलख एन शर्मा को श्रम सांख्यिकी पर बनी उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये समिति देश में रोजगार और श्रम बाजार से जुड़े आंकड़ों की समीक्षा करके अधिक सटीक, विस्तृत तथा समय पर उपलब्ध कराने के उपाय सुझाएगी। समिति भारत के बदलते श्रम बाजार का भी अध्ययन करेगी। प्रोफेसर शर्मा वर्तमान में मानव विकास संस्थान के निदेशक हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कल बिहार के गयाजी जिले के खिजरसराय में नए प्रौद्योगिकी केंद्र की आधारशिला रखेंगे। ये केंद्र दक्षिण बिहार और मगध क्षेत्र में 170 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित किया जाएगा। इससे इंजीनियरिंग और वस्त्र परीक्षण सहित प्रमुख क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकेगा। ये केंद्र उन्नत विनिर्माण सुविधाएं, तकनीकी सहायता और उद्योग उन्मुख प्रशिक्षण प्रदान करेगा। झारखंड में पिछले 24 घंटों में बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 3 महिलाएं और एक बच्चा शामिल है। पुलिस ने बताया कि मृतकों में 2 लोग रांची और 2 गढ़वा जिले के हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ ऐसा लैंडर तैयार कर रहा है जो चंद्रमा पर 200 दिन तक सक्रिय रहेगा। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की। ये सेवा राज्य में मंडी जिले के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। श्रीलंका के कोलंबो में आज 5,000 से अधिक नर्तक नर्तकियों ने भरतनाट्यम की सामूहिक प्रस्तुति देकर ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपलब्धि हासिल की। इस सामूहिक प्रस्तुति को गिनीज विश्व रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। भारतीय शास्त्रीय नृत्य और सांस्कृतिक विरासत के इस उत्सव का आयोजन भारत की संगमम ग्लोबल अकादमी और श्रीलंका की संगमिज लिया ने किया। फीफा विश्व कप के ग्रुप डी के अपने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने तुर्की को 2-0 से हरा दिया है। ऑस्ट्रेलिया के नेस्टोरी इरनकुंडा और कॉनर मेटकॉफ ने एक एक गोल दागा। अमेरिका के न्यूजर्सी में ग्रुप सी के मैच में आज स्कॉटलैंड ने 28 वर्ष बाद हैती को 1-0 से हरा दिया। आईसीसी महिला T20 विश्व कप में आज भारत अपने अभियान की शुरुआत पाकिस्तान के साथ मैच से करेगा। ग्रुप ए का ये मैच बर्मिंघम के एस बेस्टन में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: आकाशवाणी संबलपुर श्रोताबंधु शुणुले हिंदी रे संवाद रिले कलु आकाशवाणी दिल्ली केन्द्र रो एथर आरंभ करुछु संबलपुरी गीतर कार्यक्रम कार्यक्रम आरंभ रे शुणंतु दयानिधि बेहरांक कंठरे गीतटी गीतिकार विनोद कुमार पसायत।

0: कार्यक्रम 21 जून को कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष योग दिवस की थीम है स्वस्थ आयु के लिए योग। श्रीलंका के कोलंबो में आज 5000 से अधिक कलाकारों ने भरतनाट्यम की सामूहिक प्रस्तुति देकर ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपलब्धि हासिल की है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: कोलंबो के गोल्फेस ग्रीन में आज इतिहास रचा गया। 5000 से अधिक भरतनाट्यम कलाकारों ने एक साथ प्रस्तुति देकर दुनिया की सबसे बड़ी भरतनाट्यम नृत्य कक्षा का एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया। रंग, लय और परंपरा के अद्भुत संगम ने पूरे वातावरण को सांस्कृतिक उत्सव में बदल दिया। महीनों की तैयारी के बाद साकार हुए इस ऐतिहासिक आयोजन ने भारतीय शास्त्रीय नृत्य की वैश्विक लोकप्रियता को नई ऊंचाई दी है। इस उपलब्धि के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने कलाकारों और आयोजकों का प्रतिनिधित्व करते हुए प्राप्त किया। भारत और श्रीलंका के सांस्कृतिक संबंधों को और सशक्त बनाने वाला ये आयोजन कला और विरासत की एक अविस्मरणीय मिसाल बन गया है। अहमद मुइन फारूक, आकाशवाणी समाचार, कोलंबो।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जारी विवाद को समाप्त करने के लिए एक समझौते पर आज हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसके बाद हॉर्मूज जल डमरू मध्य सभी देशों के लिए खुला रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह समझौता दोनों देशों के संबंधों को बेहतर बनाने की दिशा में बड़ा कदम होगा। उन्होंने दावा किया है कि ईरान अब परमाणु हथियार नहीं चाहता। हालांकि ईरान ने आज समझौते पर हस्ताक्षर होने की खबरों की पुष्टि नहीं की है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई ने कहा है कि अगर कोई समझौता होता भी है तो वो आगे की बातचीत के लिए केवल प्रारंभिक ढांचा होगा। इस बीच ईरान के कई शहरों में लोगों ने अमेरिका के साथ प्रस्तावित शांति समझौते के विरोध में प्रदर्शन किया। ओडिशा में 3 दिवसीय फसल उत्सव राजा आज पाहली राजा उत्सव के साथ शुरू हुआ। ये महोत्सव मॉनसून और उड़िया महीने आषाढ़ के आगमन का प्रतीक है।
2: राज्य के सबसे पसंदीदा सांस्कृतिक त्योहार का नाम रजस्वला से आया है, जो इस मान्यता को दर्शाता है कि महिलाओं की तरह धरती भी आराम और नई ऊर्जा पाने के दौर से गुजरती है। उड़ीसा के हर घर में त्योहार के खास पकवाने जैसे पोड़ पीठा, अरीसा पीठा, चकोली पीठा और मसूर राजा पान की खुशबू फैली हुई है। राजा नारित्व और प्रकृति तथा जीवन को बनाए रखने वाली उसकी प्रक्रियाओं के प्रति उड़ीसा के गहरे सम्मान का एक अनोखा उत्सव है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अवसर पर देशवासियों, विशेष रूप से ओडिशा वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि ये त्योहार प्रकृति और समाज के गहरे जुड़ाव को दर्शाता है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने का अनुमान व्यक्त किया है। आज पूर्वोत्तर क्षेत्र, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश, तेलंगाना और पश्चिमी राजस्थान में कल तक तेज आंधी तूफान की संभावना है। महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में आज लू चलने का अनुमान है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने विश्व रक्तदाता दिवस पर लोगों से स्वैच्छिक रक्तदान की अपील की है। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रक्तदान किसी व्यक्ति को नया जीवन देने का सर्वाधिक प्रभावी और पावन अवसर है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत अपने पहले मैच में पाकिस्तान के साथ खेलेगा। ग्रुप ए का ये मैच बर्मिंघम के एस्बेस्टन में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत अब तक पाकिस्तान को 16 में से 13 मुकाबलों में हरा चुका है। और फीफा विश्व कप के ग्रुप डी के अपने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने तुर्की को 2-0 से हरा दिया है। ऑस्ट्रेलिया के नेस्टोरी इरनकुंडा और कॉनर मेटकॉफ ने 1-1 गोल दागा। अमेरिका के न्यूजर्सी में ग्रुप सी के मैच में आज स्कॉटलैंड ने 28 वर्ष बाद

0: हैती को 1-0 से हरा दिया है। इसी ग्रुप में 5 बार के चैंपियन ब्राजील और मोरक्को के बीच मैच 1-1 से बराबरी पर रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 यूरोपीय देशों की यात्रा के पहले चरण की शुरुआत फ्रांस के नीस शहर से की। श्री मोदी अब से कुछ देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे। झारखंड में कल से बिजली गिरने की घटनाओं में 7 लोगों की मौत। दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 2-3 दिनों में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी कटक आमर परवर्ती कार्यक्रम आंचलिक संवाद शुणिपारे टिकिए परे।
2: बन्या हेउ बा महाबात्या सबु परिस्थिति रे
3: गारु सहर जाए सबु स्थान रे
2: आबाल वृद्ध बनिता समस्तंक पाई
3: जुआंग ओ सांतालंक ठारु बंडा एवं कोयांक जाए सबुरी भाषा रे
2: केवल आकाशवाणी।

0: सुभद्रा शक्ति बजार रे एसएचजी मां मानंको हात तयारी हस्ततंत ओ हस्तकला सामग्री सहित मिलेट्रो प्रस्तुत विभिन्न जैविक सामग्रीर संभार हस्ततंत ओ हस्तकला सामग्री बेस आकर्षणीय एवं प्रतिटी मिलेट सामग्री शुद्ध ओ स्वास्थ्यप्रद जून 12 रु 16 तारीख पर्यंत एथरर रज मौजकु आहुरी उल्लासरे भरिबाकु जाउछि सुभद्रा शक्ति बजारर स्वतंत्र रिहाती एथर रजरे स्वतंत्र मजा सुभद्रा शक्ति बजार स्ट्रक स्कूल पाख यूनिट 8 एसआईआरडी परिसर भुवनेश्वर
1: श्रोताबंधु एथर सुनंतु पति पत्नी और वो कथा चित्र रु ए गीतटी कंठशिल्पी रोचक कोहली अरिजित सिंह एवं नेहा कक्कर गीतिकार कुमार संगीत निर्देशना रोचक कोहली

0: माँ माँ देखों तू इथरो राशन कार्ड रे कित्ते चावलो मिले ची।
1: अरे बहु इत्ते चावलो कोटु अनिलु किए दला
0: किए आउ दबा माँ आमो सरकार दे चंती मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना आरंभ होई ची परा एबे आमको मुंडो पीछा 5 किलो नुह 10 किलो चावलो संपूर्ण मागणा रे मिलु ची।
1: अरे बा एटा तो भारी भलो कथा सरकार आमो दुख बुझी चंती।
2: मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना 3 कोटी रु अधिक ओडिसावासी को मिलु छी अतिरिक्त खाद्य सुरक्षा। ओडिसा सरकार आपणक सुख दुखर साथी।
3: श्रोता बंधु एथर सुनंतु लता मंगेशकर एवं एसपी बाला सुब्रमण्यम को कंठरे हम आपके हैं कौन कथा चित्र रुई गीतटी। गीतकार रविंद्र रावल एवं संगीत निर्देशना राम लक्ष्मण।
4: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's start the fun!

0: आकाशवाणी संबलपुर हेलो अनुरोध कार्यक्रम आज्ञा आपनको बहुत बहुत स्वागत आमर कार्यक्रम के केंता अछन आज्ञा केंता अछन आओ का करथिले यादे
1: अरे फोन लाई जस्तो गला कॉल वाला रो रिहला नो जिसका कॉल उठा दे जे जे जे सदे लाई कर कर के जे
0: आज्ञा
1: वाला
0: आज्ञा आज्ञा आज्ञा आओ काना कहन आज केन गीत सुनबा के अपन चाहू छन
1: मोहला रो चुबी वसावानी
0: टिप टिप वर्षा पानी मोहरा रो बहुत सुंदर गीत बाछले आज्ञा आज अपन अलका याग्निक आर उदित नारायण को सुनवा के चाहि छन तो आउ काना कहू ना आज्ञा अपन कर आड़े केनता आज पाग
1: आज पहिले रो रो रो सवाल दे
0: बेले
1: कोट गया मुन मुन पालन करन ठीक है हेंदा पालन हो कोसन दिगे रोया मने
0: आज्ञा आज्ञा आपण घर किछि नै करबार के पिठा पना आजि
1: पिठा पना मे आवै हले नि पलन ओ हे ठीके से नुआ खै ए फुसुनी इराउन पर से
0: नुआ
1: खै ठीके पलन दे दिए
0: आज्ञा आज्ञा हो ठीक अछे आज्ञा आपण बाछिति बार ई सुंदर गीतटा सुनमा
1: इरा इरा सब सदा मंगो बे करबे आ आ समरपुर
0: धन्यवाद आज्ञा आप कार्यक्रम थ्रु आम आप पसंद गीत के डेडिकेट कर दौचु आ सुनमा आप पसंद गीत के नमस्कार जुहार।

0: आकाशवाणी संबलपुर हेलो अनुरोध कार्यक्रम हेलो
1: नमस्कार मैडम, मैं चिरमिरी कुआसा कालरी जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ।
0: आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम को। बहुत दूर से आप हमको फोन की है, इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपको भी धन्यवाद, फोन लगा आपसे बातचीत हो रहा है, खुशी बढ़ रहा है मैडम। और स्मृति मनन के साथ अपने पसंद के गीत बताता हूँ। फिल्म का नाम है सर, SIR सर
0: जी,
1: और गीत की बोल है सुन सुन सुन बरसात की धुन सुन, गायक कुमार सनी।
0: बहुत सुंदर गीत।
1: सबसे पहले गीत आपके निर्देशक साहब को, भारत श्रोताओं को, आकाशवाणी संबलपुर में जुड़े सभी लोगों को, आपके परिवारजन को, रिश्तेदारों को, अपनी सहेलियों को, आकाशवाणी संबलपुर में जुड़े सभी कृषक भाई बहनों को और स्टाफ कर्मचारियों को, हेलो एक्टर रेडियो श्रोताओं को, पूरे भारत श्रोता को डिटेल करो मैडम। इस गीत को पूरा सुनाइएगा
0: जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और सुन लीजिए आपका पसंद का गाना
1: जी मैडम।
0: जी धन्यवाद।

0: ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ବଲପୁର ହେଲୋ ଅନୁରୋଧ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲୋ
1: ହେଲୋ
0: ହେଲୋ
1: ଦିଦି
0: ହଁ ଜି ନମସ୍ତେ କହାଁ ସେ ବାତ କର ରହେ ଔର କୌନ ବାତ କର ରହେ ଜି ଜି ଫିର ସେ ବୋଲିଏ ଫିର ସେ ବୋଲିଏ ଆପଣା ପରିଚୟ ଫିର ସେ ଦିଜିଏ ବହୁତ ଦୂର ସେ ଆପ ହମସେ ବାତ କର ରହେ ହେଁ ତୋ ବୋଲିଏ ଆପ କେସେ ହେଁ
1: मैं ठीक हूँ, आप कैसे दीदी?
0: बहुत बहुत अच्छा। आपके यहाँ मौसम कैसा है?
1: अभी तो बारिश का सीजन चल रहा है, बरसात का सीजन, तो सुबह भी बारिश हुआ था, अभी अभी बारिश होने का मतलब ये है।
0: अच्छा अच्छा
1: उम्मीद है।
0: अच्छा अच्छा तो ठीक है, बोलिए आप कौन सा गीत आप सुनना चाहेंगे आज?
1: ये है जलवा फिल्म का आंखें प्यारी है, ये गाना सुना दीजिए।
0: ठीक है, बहुत सुंदर गीत आप चूज किए हैं। तो बोलिए किसी को डेडिकेट करना चाहेंगे क्या?
1: दोस्तों के नाम डेडिकेट करना है, अमल बसुमतारी, विमल बसुमतारी, जोगेंद्र रंगपी, रमेश पात्र, अनु पात्र, अंजलि बसुमतारी
0: जी जी
1: चंद्रकांत दत्ता, सुनाराम लालुंग, विनोद गोगोई और बहुत सारे जो अभी सुन रहे हैं, सभी के लिए डेडिकेट रहेगा।
0: जी जी ठीक है, इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका पसंदीदा गाना हम डेडिकेट कर रहे हैं सबको, और सुन लीजिए आपका पसंद का ये गाना।
1: जी जी जी बहुत बहुत धन्यवाद।

0: आकाशवाणी संबलपुर, हेलो अनुरोध कार्यक्रम। हेलो,
1: हेलो नमस्ते दीदी, प्रणाम।
0: नमस्ते जी, आप कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: मैं कोडवा साजा छत्तीसगढ़ जिला बेमेतरा से राम स्वरूप गुप्ता बोल रहा हूँ दीदी।
0: जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम को।
1: जी दीदी,
0: और बोलिए, आप कैसे हैं?
1: सब बढ़िया दीदी, आप लोग?
0: हम भी बहुत अच्छे हैं। और आप क्या करते हैं?
1: तीर्थ यात्रा काम करता हूँ दीदी, सवारी कर चक्कर की तीर्थ यात्रा घुमाने के लिए जाता हूँ।
0: अरे, आप तो बहुत पुण्य काम कर रहे हैं।
1: जब आप ही वो लोग आशीर्वाद दीदी।
0: जी जी जी ठीक है, फिर बोलिए, आप कौन सा गीत आज सुनना चाहेंगे?
1: प्यासा सावन का है, मेघारे मेघारे सुरेश वाड़ेकर जी की आवाज है, और इसमें जितेंद्र और मौसमी चटर्जी की फिल्म है।
0: जी जी जी बहुत अच्छा गीत आप चूज किए हैं। और किसी को डेडिकेट करना चाहेंगे क्या?
1: हाँ दीदी, पहले तो संबलपुर रेडियो जो आकाशवाणी के आरजे बहन लोग, आप लोग आरजे भैया लोग हैं, उसके बाद मेरा परिवार बड़ल का प्रियस गुप्ता, उसके दो लड़के श्रेयांश गुप्ता शशांक गुप्ता, लड़के सेकंड नंबर प्रीति जैन, उसके दो लड़के अनंत जैन हंसित जैन, छोटा लड़का विवेक गुप्ता, पत्नी के नाम हीरा देवी। तो उसके बाद रेडियो संबलपुर जितने भी श्रोता भाई बंधु उसके साथ इस गीत को सुनेंगे के लिए।
0: जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। और सबके साथ मिलकर आइए सुनते हैं आपका ये पसंदीदा गाना।
1: जी जी धन्यवाद,
0: धन्यवाद, नमस्कार।

0: आकाशवाणी सम्बलपुर, हेलो, अनुरोध कार्यक्रम, हेलो।
1: हाँ नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार नमस्कार आज्ञा, के कहोचन केनो कहोचन?
1: लोकनाथ साहू भालू बहाल विजयपुर बरगन कहूँ।
0: आज्ञा आज्ञा, आपनको बहुत बहुत स्वागत आज्ञा। आपन होचन आज हमर लास्ट कलर।
1: लास्ट कलर
0: आज्ञा, तो कहोन आपन आज केन के सुनवा के चाहबे?
1: आज गदर फिल्म रे देबे।
0: आज्ञा गदर र केनटा सुनबे के चाहबे?
1: मैं निकिला गड्डे लेके रास्ते पर।
0: बहुत सुंदर गीत बाची छन आज्ञा। आ कहोन आज्ञा आपन केनता अछन?
1: भलो छौ, एटा त प्रथम रजन लागे, हैप्पी प्रथम रजन।
0: आज्ञा आज्ञा, आपन को बहुत बहुत शुभकामना।
1: संक्रांति आरो सतन लागे आमे आज छी लोग किनि आमे तीन दिन तक मानसु। चार नंबर दिन आमे पूजा पाठ कोले जाकि सेटा चास बाड़ी मैट कुड़ा कुड़ी आमे तीन दिन तक आमे निषेध है, बंद है।
0: आज्ञा आज्ञा, एटा त हमर ओडिया परंपरा। आमे मान ले जाई ही हमर परर पीढ़ी मैने ई सब कथा मैने जानबे और मानबे ना, काना कहो जान?
1: आगो तो हॉल भी ने फालन थे, याद तो हॉल होला ने ना, ट्रैक्टर मने भी बंद हो ची।
0: आज्ञा आज्ञा,
1: आओ अमर हैप्पी बर्थडे जने देबे अमर मामा मिश्रा फ्रॉम भुवनेश्वर। से माने प्रथम रोज के जन्म हे दिली बोली कहि दिले दिने आमे कॉल कर दिली। आओ
0: आज्ञा आज्ञा, तांकू बहुत बहुत शुभकामना, जन्मदिन रो बहुत बहुत शुभेच्छा। हमर कार्यक्रम तरफ रु आमे दे दउ छु, आउ तांकू डेडिकेट करमा के गीतटा, कां जे हमर समय बहुत कम आज्ञा, आउ सुनि पकामा आपनकर पसंद रो गीत के।
1: आउ डेडिकेट ही करो फिर।
0: कौन कौन आज्ञा?
1: मोर मित्र लोकनाथ प्रधान, रविंद्रनाथ मेहर, गोविंद मेहर, सुबल कुमार साहू, करम सानी साहू, चैतन्य पटेल, सेवाराम मेहर, राधाकांत भाई, भक्त चरण भाई, अश्विनी साहू, नारायण प्रधान, मुरली मेहर, लक्ष्मी नारायण बाग, चित्रसेन सबर, मनोज पटेल, नागू पात्र, नारायण मेहर, हरेश परुआ, पंचानन पंच विहार, जशवंत पाई, आनंद मेहर, सौन्य प्रभाकर, दीक्षा गोपाल, लिंगराज और बहु प्रशांत, रोहिणी मेहर, क्षमा सागर, निराकार रणा, मुना पंडा और सत्य कुमार साहू, आमर वीरभर बाग समस्तक डेडिकेट कर लेबे।
0: ठीक अछि आज्ञा, ई कार्यक्रम माध्यम ती समस्तक ई गीतटा
1: डेडिकेट
0: आज्ञा आज्ञा, सुनि पगुन आपनकर पसंद रे गीत, काहे समय बहुत कम हमर पाक।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों फ्रांस के नीस में इस समय शिष्टमंडल स्तर की वार्ता कर रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर खास तौर से चर्चा हो रही है, जिसमें रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आज नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इसमें भारत में तेजी से बढ़ते नवाचार और स्टार्टअप परितंत्र को दर्शाया गया है। 3 दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, नव प्रवर्तनकारी अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक शामिल होंगे। इनमें 120 असाधारण स्टार्टअप, 20 से ज्यादा उत्कृष्टता केंद्र और 13 महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी स्तंभ भी शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच एक सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तनकारियों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत फ्रांस साझेदारी को एक ऐसा स्थायी संबंध बताया जो आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और भविष्य के लिए एक समान दृष्टिकोण पर आधारित है।
1: भारत और फ्रांस का रिश्ता, इस रिश्ते में कनेक्शन भी है, कन्विक्शन भी है, इनोवेशन भी है, इंस्पिरेशन भी है, शेयर्ड वैल्यूज हैं, शेयर्ड विजन भी है। और इसी रिश्ते की नींव पर बीते वर्षों में हमने साथ मिलकर नई पहले शुरू की है और वैश्विक चुनौतियों के समाधान खोजने का भरसक प्रयास किया है।
0: फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उभरने की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि आज प्रश्न ये नहीं है कि भारत में नवाचार हो रहा है या नहीं, बल्कि प्रश्न ये है कि भारत के साथ मिलकर कौन नवाचार करे। उन्होंने सबसे लंबे समय तक भारत का प्रधानमंत्री रहने के लिए श्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी का वहां पारंपरिक स्लोवाक शैली में स्वागत किया जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज सागर जिले में आयोजित एक समारोह में लाडली बहना योजना की 37वीं किस्त जारी की। राज्य भर में 25 करोड़ से अधिक महिला लाभार्थियों के खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की गई है। मुख्यमंत्री ने देवरी विधानसभा क्षेत्र में लगभग 191 करोड़ रुपए की 53 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और उद्घाटन भी किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि कर्नाटक को यूपीए सरकार के समय की तुलना में केंद्रीय करों के हिस्से के रूप में 5 गुना ज्यादा धनराशि मिली है। बेंगलुरु में विकसित भारत संकल्प समावेश कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कर्नाटक को केंद्र से लगभग 4 लाख करोड़ रुपए कर हिस्सेदारी के रूप में मिले हैं। उन्होंने राज्य सरकार के इस आरोप को खारिज किया कि कर्नाटक को केंद्र से पर्याप्त सहायता नहीं मिल रही है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने ओमान तट के पास भारतीय ध्वज वाली नौका विराट 1 के इंजन में खराबी आने की जानकारी दी है। इसमें सवार 14 भारतीयों को बचा लिया गया है। दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि ओमान के अधिकारियों के साथ तालमेल से बचाव अभियान जारी है। अंतालिया में तीरंदाजी विश्व कप के तीसरे चरण में भारत के धीरज बोमा देवरा और किशोरी कुमकुम मोहद ने स्वर्ण पदक जीते। फाइनल में रिकर्व मिक्स्ड टीम स्पर्धा में भारतीय जोड़ी ने दक्षिण कोरिया की ओह ये जिन और किम जे देओक को हराया। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत अपने पहले मैच में पाकिस्तान से खेलेगा। ग्रुप ए का ये मैच बर्मिंघम के एस्बेस्टन में भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात 10:30 बजे जर्मनी का मुकाबला कुरासाओ से होगा, वहीं रात 1:30 बजे नीदरलैंड्स और जापान होंगे आमने सामने। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी संबलपुर सुनुले हिंदी संवाद आकाशवाणी दिल्ली केन्द्र बर्तमान शुणु संबलपुर मुख्य संवाद
3: आकाशवाणी संबलपुर मुखिया खबर पढ़ुं तापस रंजन साहू। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी फ्रांस आउ स्लोभाकिया द्विराष्ट्र यूरोप गस्तर पहला दिन एज निस पालाइस डेस एक्सपोजिशन रे भारत इनोभेट्स कार्यक्रम के प्रधानमंत्री मिलित भावे फ्रांस राष्ट्रपति संगे कले उद्घाटन। प्रधानमंत्री सांगे कार्यक्रम थी जोग देले वैदेशिक मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, वाणिज्य और शिल्प मंत्री पीयूष गोयल, जातीय सुरक्षा परामर्शदाता अजित डोभाल, प्रमुख वैज्ञानिक परामर्शदाता अजय कुमार सुद, इन्फोसिस प्रतिष्ठाता नारायण मूर्ति आउ बहुत भारत व्यवसाय जगतर ना करा व्यक्ति। आवा 16 तारीख 52वां G7 सम्मेलन में प्रधानमंत्री देवे जोग। आवा 21 तारीख अनुष्ठित होबारके थिबार अंतर्जातीय योग दिवस थी उत्साह सहित भाग नेबारके देशवासी को आह्वान देले केन्द्र आयुष मंत्री। अंतर्जातीय योग दिवस आघनु कोणार्क सूर्य मंदिर ठाने सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम हला अनुष्ठित। योग देले राज्यपाल डॉक्टर हरिबाबू कम्भम पाटी। राज्यर कृषि भित्तिक तीन दिनिया गणपर्व रज आज ठानु हेउछि मूल। आज पहली रज एवं काल रज संक्रांति आर परदिन भूमि दहन करा पालन। रज अवसर राज्यवासी को शुभेच्छा जनाले राष्ट्रपति राज्यपाल और मुख्यमंत्री। संबलपुर प्रसिद्ध शीतलष्ठी यात्रा आज ठानु हेउछि मूल। सहर भिन्न भिन्न शैवपीठनु आज अनुष्ठित होउछि बाबांकर पतरपेणी। भारत सरकार संस्कृति मंत्रालय और ओडिशा सरकार ओडिया भाषा साहित्य संस्कृति विभाग तरफ आयोजित सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा थी जोग देबा लागि आज बरगढ़ जिलार 57 जन तीर्थयात्री आरंभ करिछन तागर यात्रा। ओडिशा सहरांचल घरभड़ा नियंत्रण अधिनियम 2026 चिठा नियमावली हला घोषित। चिठा नियमावली बाबदे जनसाधारण मतामत आह्वान कले सरकार। आर किसी समय उतारु बर्मिंगहाम एजबेस्टन ठाने भारतीय महिला क्रिकेट दल आईसीसी महिला टी20 विश्वकप थी तार पहला मैच खेलवा पारंपरिक प्रतिद्वंदी पाकिस्तान विरोध थी। राज्य सबु इलाका के मौसुमी फैलवा आघनु सारा राज्य जबर गुलगुली हेबा बोली भुवनेश्वर आंचलिक पानीपाग विज्ञान केन्द्र जारी कला सूचना। एवं 24 घंटा भितर जबर वर्षा हेबा बोलकर मयूरभंज बालेश्वर कंधमाल कोरापुट जिला के कला सतर्क। एचनीर मुखिया खबर इनो शेष हेला। मुखिया खबर फेर घाय सुनी पार्बे राति 8 बजे।
2: ଶୁଣୁଥିଲେ ସମ୍ବଲପୁର ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ବଲପୁର କେନ୍ଦ୍ରରୁ। ଆପଣମାନେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅନ୍ ଏଆଇଆର୍ ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ FM 101 MHz ରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିପାରିବେ।

0: अच्छा बच्चों, सब लोग आ गए हैं ना?
1: हाँ, आ गए हैं।
0: आप किस स्कूल में पढ़ते हैं?
1: मारुति संगीत पाठशाला।
0: मारुति संगीत पाठशाला के बच्चे हैं आप लोग?
1: हाँ।
0: तो आज हम एक नया गाना सिखाएंगे।
1: हाँ, सिखाएंगे।
0: किसने लिखा है मालूम है? दोड्ड रंगे गौड़ा। किसने लिखा है ये गाना?
1: दोड्ड रंगे गौड़ा।
0: तो आप गाना सीखने के लिए तैयार हैं?
1: हाँ, तैयार है।
0: इस गाने का शीर्षक है कडल हक्की गलू। क्या है?
1: कडल हक्की गलू।
0: तो पहले क्या करना, इस गाने को लिख लेना है ना?
1: हाँ।
0: तो बाद में हम गा सकते हैं, नहीं तो नहीं गा सकते, है ना?
1: हाँ, हाँ।
0: तो पहले क्या करना, पेन पेंसिल पेपर सब उठा के अपने आगे रख लेना है।
1: हाँ।
0: रख लिया है?
1: हाँ।
0: अच्छा, तो मैं डिक्टेट करती हूँ, आप
1: हाँ।
0: सब लिख लीजिए। हाडु तिहवु हारु तिहवु
1: हाडु तिहवु हारु तिहवु
0: कडल करेय खग कुला
1: कडल करेय खग कुला यनी तो मुगिला
0: उद्द अगल
1: उद्द अगल
0: जी
1: की दनी तू
0: बांदड़ा
1: बांदड़ा।
0: अच्छा, तो एक पहला स्टैंजा है।
1: हाँ?
0: हाँ। आगे का स्टैंजा है बान लोक नगुव नाक
1: बान लोक नगुव नाक
0: हारो हक्की पालिगे
1: हारो हक्की पालिगे
0: रेक्के बीसी धैर्य सूसी
1: रेक्के बीसी धैर्य सूसी
0: चुक्की मुट्टो हम्मीगे
1: चुक्की मुट्टो हम्मीगे।
0: लिख लिया?
1: हाँ।
0: सब लोग लिख लिया?
1: हाँ।
0: अच्छा, तो अगला स्टैंजा दूर दूर हारी हारी
1: दूर दूर हारी हारी
0: व्योम कानुवा बगे
1: व्योम कानुवा बगे हसीव मरेसी वांछे मेरेसी
0: दिगंत सेरो लघु बगे
1: दिगंत सेरो लघु बगे।
0: तो अब बच्चा आखिर स्टैंजा
1: हाँ।
0: वो भी सुना दो।
1: हाँ।
0: लिख लेते हैं।
1: हाँ।
0: याव नाडो यंथ काडो
1: याव नाडो यंथ काडो
0: हारो आसे हक्कीगे
1: हारो आसे हक्कीगे
0: मुक्त गगन नूरु काल
1: मुक्त गगन नूरु काल
0: ईजो शक्ति रेक्केगे
1: ईजो शक्ति रेक्केगे।
0: तो सब लोग एक गाना तो लिख लिया।
1: हाँ।
0: अब इसे कैसे गाना, किस तरह गाना, ये तो मालूम हो रहा है ना?
1: हाँ।
0: अच्छा जी, जरा चुपके रहना, गीता जी आ रही है दीदी।
1: हाँ?
0: उसी को हम रिक्वेस्ट कर देंगे।
1: हाँ?
0: गीता जी आइए यहाँ, हमारे बच्चे सब ये गाना सीखना चाहते हैं। पहले इसके आरोह अवरोह क्या है ये बताएंगे?

0: कर्नाटक संगीत में यह चक्रवाक राग होता है और हिंदुस्तानी में इस राग को कहते हैं आहिर भैरव। इसका ताल है कर्नाटक संगीत में चतुरस्र जाति एक ताल तीसर नड़े। इस ताल को हिंदुस्तानी में कहते हैं दादरा। तो अब भैया विश्वनाथ नाकुट जी भी यहाँ आए हैं, वे तबला बजाने के लिए तैयार होके बैठे हैं। तबला बजे के दिखाते हैं ना।
1: धादिना धातिना धादिना धातिना धादिना धातिना धादिना धातिना।
0: अब आप लोगों को मालूम हो गया ना यह गाना कौन सी राग पर आधारित है। अब दीदी आपको सिखाती है ये गाना।
2: ताकी ता ताकी ता।

0: पहले अंतरा और स्थाई दोनों का याद हो गया, अब दूसरा अंतरा सीखेंगे।
1: दूर दूर हारी हारी
2: निगत से लघु बगे।
0: हाँ, दूसरा अंतरा का धुन कैसा है ये मालूम हो गया, मगर जो स्वर आते हैं वो नहीं मालूम हुआ है ना, तो गीता दीदी स्वर को भी सिखाती हैं।

अब ये आखिर का अंतर जो है ना, वो पहली अंतर था ना, बान लोक नगुना का, उसी के जैसे ही है। अच्छा तो गाते हैं।

आकाशवाणी संबलपुर वर्तमान शुणु गीतटी ओडिया लोक संगीत प्रथम गीतटी प्रथम गीतटी मोहम्मद अजीज एवं कंठरे संगीत प्रेमानंद गीत रचना बेबुदत्त।

0: I think Saurabh Das, Junior Athletic Champion 2023. Anything wrong with you? Don't worry. Try for the next time.
1: Tension nahi na. Maybe kichi better option thibo to pai. Chhade obhyas. Hale better option kon? Aau kichi option rahibo to pakhare.
2: स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग ओडिशा सरकार
3: सुभद्रा शक्ति बाजार रे एसएचजी मां मानंक हाथ तयारी हस्तंत ओ हस्तकला सामग्री सहित मिलेट्र प्रस्तुत विभिन्न जैविक सामग्री रो संभार हस्तंत ओ हस्तकला सामग्री बेस आकर्षणीय एवं प्रतिटी मिलेट सामग्री शुद्ध ओ स्वास्थ्यप्रद जून 12 रु 16 तारीख पर्यंत ए थरर रज मौज को आहुरी उल्लास रे भरिबा को जाउची सुभद्रा शक्ति बाजार रा स्वतंत्र रिहाती ए थरर रज रे स्वतंत्र मजा सुभद्रा शक्ति बाजार स्टार स्कूल पाखो यूनिट 8 एसआईआरडी परिसर भुवनेश्वर

0: ଏବଂ ଆସନ୍ତା ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କାଳବୈଶାଖୀ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କଲା ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। आंचलिक संवाद रो प्रसारण आज पे एतिकरे शेष होला।
1: यहाँ पर क्या इंटेंसिटी आप फील कर रहे हैं?
2: देखिए, इस बड़े मैच में थोड़ी बहुत टेंशन तो होती है दोनों टीमों के लिए, बट
0: माओवादी सूचना आधार में यह सब सामग्री सह माओवादी नित्य व्यवहार्य सामग्री जबत कर दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु राज्य उपकूल अंचल में प्रवेश कर आगामी दुई दिन मध्य मौसुमी वायु राज्य अन्य भाग को स्पर्श कर।
3: आपण माने कार्यक्रम शुणुछन्ति आकाशवाणी कटक केन्द्र रु। इंग्लैंड रो एजबस्टन रो बर्मिंगहम
0: सतर्क सूचना जारी करा जाय छी। आंचलिक संवाद शेष होगा पूर्व मुख्य संवाद पंथरे गिनीज विश्व रेकर्ड्रे स्थानित है आयुष मंत्रालय तरफ आज अनुषित विश्वस्तरीय ऑनलाइन योग कार्यक्रम नीट यूजी पुनः परीक्षा ओएसआरटीसी बस से मागणा जातायात करें परीक्षार्थी परीक्षार्थी तालिका प्रदान करने को जिलापा कहुवा नहीं सूचना दे मंत्री एवं आसंता चौबीस घंटा मध्य कालबैशाखी नहीं विभिन्न जिला सतर्क सूचना जारी कला आंचलिक पाणिपाग विज्ञान केन्द्र। आंचलिक संवाद प्रसारण आज एतिकरे शेष होला।
4: रही जा असली नोट रे कहि के खेलुचु
5: ब्रो एटा फटा अछि
4: सुने फटा चिरा किंबा पुराना नोट को बैंक शाखा रे एक्सचेंज करि परिबा
5: बा नुआ नोट मिले बो
4: हाँ जेओ थीरे तू आमको पिज़्ज़ा पार्टी देबू। आरबीआई कहे स्मार्ट बनो कूल रहो।
3: अपन मने कार्यक्रम सुनचुन्दे आकाशवाणी कटक केन्द्र रु। इंग्लैंड रो एजबस्टन रो बर्मिंगहम ठार अनुष्ठित महिला टी ट्वेंटी विश्वकप क्रिकेट मैच रे भारत एवं पाकिस्तान मध्ये अनुष्ठित मैच रो धारा विवरणी रिले करी प्रचार करुछु आकाशवाणी दिल्ली रू।

0: देह पा नसवार कारण सब जानल तो
1: जानलु मा सब जानलु
0: जा हो तुम मैंने मोर कथा के बुझुच इटा जानिकरी मते बहुत भल लागुचे
2: बयले केंता केंता कले तुमर देह पाहा नुकुर हेबा जे कहो गो मैडमा तुमे जहा जहा कहबो सोर रखी करी सबु करमु
3: हेटा मुई कहू जे सुनो

0: से जन उसो कसार लागि असुविधा होचे बोली कहुछ
1: सुन मंगलु सुन ई समन्वित रोग पोक नियंत्रण रो हिसाबे खराटिया चास बिहन विशोधन निमफिरुआ पके करी आर आमर खेतर सहाजकारी कीड़ा मानकर सहाय नहीं करी पोक बीमारी के आमे आयत करी पार्मा आर जदि निहाती दरकार पड़ुचे बोले कृषि विशेषज्ञ मानकर उपदेश हिसाबे उसो कसा पकामा एंता कले खर्चा के खर्चा कमी जीवा आर ई विषमहरा सब छुछाटा के माँ मैट्र दी भीतर के ना जाए इथिन आमर मंगल अच्छे आर माँ मैट्र भी मंगल हवा
2: रही थो बाबू ये उसो कसल लगे मोर कायटा असुविधा होची जे इमन को दीपत कही देसी

0: 에헤 구리야. 어떠떠떠떠떠떠떠떠떠. 어어어 낙도. 아니 어허 어르르 떠떠떠떠떠떠.
1: बहुत बढ़िया सीखवा ले मिला भाई
2: आज वगैरह दिन ठीक लाला की बात करने का
1: माँ मैं मार मनोर को था जिन्दा कवि तबने मार को था
2: लेखक बोल
1: हाँ लेखक तबने माँ माटेर को था कलाकार टुने जेनी सबरे ये देशों
2: ताकर दुखोर को था पूरा उत्तरी
1: एंजल इतने सुंदर लगला पूरा मन के भेदी वाला अरे देखो तो हमें जो तबले खुश थी सुन है तबले जो भल काम करी पार्सों हमें माँ मार के जो दी सुस्थ रखमा बेले जी करी हमें भल उत्पादन पैमा और हम यदि भल उत्पादन पैमा बोले हमार परिवार जी करी सुस्थ रहबा सुखी रहबा और संपन्न रहबा ने के
2: देखो मां मैट करी हमें जतन ने कोला माटी सब पैमा कि हमें हम खाद्य पैमा वस्त्र बसर सब किज मिलु जे
1: हां परे
2: बोले से जिनिस के हम वन करी ताकर जे जतन पादन करी ने रखला हम त मुन बेकार हि माने
1: आ देखो तो मां मैट सब जकर सब छे तो सबु जगर जेतु सोउचे आमे तार भी जतन रखवर अमर भी कर्तव्य है दायित्व है आउ सेटा जे आमे नै कोई पारुछु बले आमे खराब पु बोली थोराज माने शास्त्र रे गुडे कथा अछे भाई खराब पु हि परबा किनु मां केबे खराब नै परे तो मां तो खराब नै हि किनु आमे भल पु हेबार कथा खराब पु नै हेबार कथा जे सुनो तो एते सुंदर जन सबु अभिनय करितिले के सबु ना के सबु भाग नैथिले टिके जल्दी
2: कोई नाम बोलते तो
1: हाँ।
2: जेन माने नाटक रे थिले से माने ले कृष्णचंद्र आचार्य गणेशराम सेठ कमला साहू मानसी नंद आ गीत जेन गाई थिले रीना दास गगन चंद्र बाग धनेश्वर दास बजे थिले जेन माने से माने ले देवाशीष पाढ़ी रंजन साहू प्रदीप्त शेखर महापात्र सोमनाथ जाल शंकर प्रसाद प्रधान
1: अच्छा समिया तो हे गेलो अभी कथा लाई थी तो
2: कोई खुसुर मुसुर हेलो की जानी
1: बेले
2: पलामा हां जाओ जाओ

0: पशु पक्षी को अंशुघात रक्षा करने कि उपाय
1: अंशुघात नई दिन एगारटू अपराह तीनटा पर्यंत टाण खरारे गृहपात प्राणी को बाहर को न छाड़ गुहा कि छाई स्थान रखु
0: पशुपक्षी को स्वच्छ थंडा पा पीवा दिंतु और प्राणी।

श्रोता बंधु बर्तमान शुणतु गीतटी हिंदी कथाचित्र गीतर प्रथम गीतटी उदित नारायण एवं अलका याग्निक कंठरे गीत रचना समीर संगीत निर्देशना नदीम श्रवण कथाचित्र आओ अब लौट चले।

0: Jöran.
1: शिवलिंग केतुटी हिंदी कथचित्र गीत सुजबनी आपण कार्यक्रम सुनुंती आकाशवाणी संबलपुर केंद्र रो आमर परवर्ती कार्यक्रम सुनि परबे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र रो।

0: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नीस के ऐतिहासिक विला कैरिलॉस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच प्रमुख क्षेत्रों में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर खास तौर से चर्चा। दोनों नेताओं ने भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले दशक में 9 अरब डॉलर से बढ़कर 45 अरब डॉलर होने की संभावना। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक वाहन के कुएं में गिरने से 8 श्रद्धालुओं की मौत। ओमान तट के पास एक जहाज के इंजन में खराबी आने के बाद भारतीय चालक दल के सभी 14 सदस्यों को बचाया गया और भारत ने ब्रिटेन के बर्मिंघम में आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप मैच में पाकिस्तान को 171 रन का लक्ष्य दिया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिश्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। राष्ट्रपति मैक्रों के साथ फ्रांस के यूरोप और विदेश मामलों के मंत्री जॉन नोएल बैरोट और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। दोनों नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों फ्रांस के नीस में इस समय शिष्टमंडल स्तर की वार्ता कर रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी को बढ़ाने पर खास तौर से चर्चा जारी है, जिसमें रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार शामिल हैं। दोनों ही नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आज नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इसमें भारत में तेजी से बढ़ते नवाचार और स्टार्टअप परितंत्र को दर्शाया गया है। 3 दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, नव प्रवर्तक, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक भी शामिल होंगे। इनमें 120 असाधारण स्टार्टअप, 20 से ज्यादा उत्कृष्टता केंद्र और 13 महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी स्तंभ शामिल हैं। इसके अतिरिक्त इसमें दुनिया भर के 350 से ज्यादा निवेशक और पूंजीपति भी शामिल हो रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच एक सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तनकारियों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर पैदा हो रहे हैं।
1: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
0: भारत और फ्रांस के संबंधों की मजबूती का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि व्यापार और रणनीतिक सहयोग कई देशों के बीच होता है, लेकिन कुछ ही संबंध साझा दृष्टिकोण और समान हितों से संचालित होते हैं। उन्होंने कहा कि नवाचार, प्रौद्योगिकी और भारत के युवाओं की आकांक्षाएं देश के विकास को गति दे रही हैं और भविष्य को भी आकार दे रही हैं।
1: भारत और फ्रांस का रिश्ता, इस रिश्ते में कनेक्शन भी है, कन्विक्शन भी है, इनोवेशन भी है, इंस्पिरेशन भी है, शेयर्ड वैल्यूज है, शेयर्ड विजन भी है। और इसी रिश्ते की नींव पर बीते वर्षों में हमने साथ मिलकर नई पहले शुरू की है और वैश्विक चुनौतियों के समाधान खोजने का भरसक प्रयास किया है।
0: इस अवसर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उभरने की प्रशंसा की।
2: 140 करोड़ लोगों की शक्ति, प्रतिभा और ज्ञान का भंडार भारत हर वर्ष 10 लाख से अधिक अभियंता तैयार करता है। अनुसंधान, नवाचार और नई प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत आज विश्व को नई दिशा दे रहा है।
3: Frontier Models is spearheading global innovation.
0: श्री मैक्रों ने भारत में बड़ी संख्या में इंजीनियरों की मौजूदगी की प्रशंसा की और चंद्रयान मिशन सहित भारत की अन्य असाधारण तकनीकी उपलब्धियों की भी प्रशंसा की। उन्होंने सबसे लंबे समय तक भारत का प्रधानमंत्री रहने के लिए श्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। श्री पीयूष गोयल ने कहा कि वैश्विक भू राजनीतिक और तकनीकी परिवर्तन के दौर में भारत एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभर रहा है।
3: The world seeks trusted and reliable partners.
4: भारत दुनिया के लिए एक भरोसेमंद साझेदार है। हमारे पास युवा शक्ति, उत्कृष्ट प्रतिभा और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने की अद्वितीय क्षमता है।
3: And a scale that few can match.
0: विदेश मंत्रालय इस समय संवाददाताओं को द्विपक्षीय बैठक में फैसले पर जानकारी दे रहा है।
5: जो भारत का परिप्रेक्ष्य है वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा आगे जाते हुए मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट को आगे ले जाते हुए हम को डेवलपमेंट, को डिजाइन, को प्रोडक्शन और को मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में जाना चाहते हैं और इसके चलते जितना जितना ज्यादा प्रोडक्शन, जितना ज्यादा डिजाइन, जितनी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग भारत में हो सके उतना अच्छा है और वो हमारी प्रेफरेंस रहेगी। तो आज की बातचीत में भी रफाल को छोड़ के और भी विषयों पे बातचीत हुई, लेकिन मैं कहूँगा एक तरह से जो अंडरलाइंग थीम था वो यही था कि जिस भी डिफेंस प्लेटफॉर्म की हम बात करें इस एक बात को हमें बेसिस लेके आगे बढ़ना होगा कि
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात स्लोवाकिया पहुंच रहे हैं। ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। दो दिन की इस यात्रा के दौरान श्री मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीत्सो से ब्रातिस्लावा में वार्ता करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
6: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के बाद आज रात स्लोवाकिया पहुंच रहे हैं। कल सुबह उनका औपचारिक स्वागत किया जाएगा। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीको से मुलाकात करेंगे। स्लोवाक गणराज्य में भारतीय समुदाय भी प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर उत्साहित है। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। स्लोवाकिया से एम पुलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले 10 सालों में 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से उन्होंने कहा कि यह वृद्धि नीतिगत सुधारों, बढ़ती निजी भागीदारी और तेजी से बढ़ रहे नवाचार परितंत्र को दर्शाती है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: श्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि लोगों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बढ़ती भागीदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच का परिणाम है, जिसके अंतर्गत विज्ञान आधारित पहलों को राष्ट्रीय विकास की मुख्य धारा से जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया, डिजिटल स्वास्थ्य, गहन समुद्र मिशन और गगनयान जैसी योजनाओं ने विज्ञान तथा नवाचार को भारत की विकास यात्रा के केंद्र में ला दिया है। चंद्रयान 3 जैसे अभियान ने अंतरिक्ष विज्ञान को जन जन की रुचि का बना दिया है। श्री सिंह ने कहा कि इन उपलब्धियों से स्वदेशी प्रौद्योगिकियों पर भरोसा बढ़ा है और भारत एक विश्वसनीय प्रौद्योगिकी साझेदार के रूप में उभरा है। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम नागरिकों के जीवन में सुगमता लाने के सरकार के कार्यों की जानकारी आपको देंगे।
3: पिछले 12 वर्षों में किए गए सुधारों ने देश में विश्वास की नई नींव रखी है। चाहे वह सुधार जीएसटी, फेसलेस टैक्स व्यवस्था या डिजिटल इंडिया से जुड़ा हो, हर पहल ने नागरिकों को यह एहसास कराया है कि वे भी राष्ट्र निर्माण में भागीदार हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में आयकर स्लैब और कर दरों में किए गए व्यापक बदलाव से सभी करदाताओं को लाभ मिला है। नई पीढ़ी के जीएसटी ने कर व्यवस्था को सरल बनाया है और लोगों का जीवन आसान किया है। कर ढांचा अब मुख्य रूप से 5% और 18% की दरों पर आधारित है, जिससे करदाताओं का दायरा और बढ़ा है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में फिल्म निर्माता और वितरक समीर दीक्षित ने कहा कि जीएसटी नरेंद्र मोदी सरकार के सबसे बड़े नीतिगत फैसलों में से एक है।
4: जीएसटी को हमारे देश में लागू हुए अब 10 साल के आसपास हो गए हैं और हमने एक बहुत बड़ा इस दिशा में प्रगति की है। पहले 17 से ज्यादा टैक्स थे, एंट्री टैक्स, सर्विस टैक्स, वैट और उन सबको मिला के फिर अभी एक मेन जीएसटी बनाया है सरकार ने।
3: नरेंद्र मोदी सरकार ने शासन और नीतियों में तकनीक का व्यापक उपयोग किया है। भारत 6G तकनीक के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की ओर तेजी से बढ़ रहा है। लक्ष्य है कि 6G से जुड़े वैश्विक पेटेंट में भारत की हिस्सेदारी लगभग 10% हो। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में महेंद्र तिवारी ने कहा कि डिजिटल इंडिया दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है।
5: डिजिटल इंडिया इज नो मोर अ कॉन्सेप्ट।
6: डिजिटल इंडिया अब सिर्फ एक सोच नहीं रह गया है, बल्कि ये एक यात्रा है। हम हर दिन आगे बढ़ रहे हैं और दुनिया को ये साबित कर रहे हैं कि भारत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। डिजिटल हाईवे किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं, खासकर हमारे जैसे देशों के लिए।
3: पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के विकास के सपनों को बड़े पैमाने पर साकार करने का प्रयास किया है और लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया है। ईज ऑफ लिविंग अब केवल एक नारा नहीं बल्कि सरकार के कामकाज का मूल मंत्र बन चुका है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में आज दोपहर एक पिकअप वाहन दुर्घटना में बच्चों सहित 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। यह हादसा मालचिरस तालुका में महासवाड़ पंडरपुर मार्ग पर तालुवांडी के पास हुआ। श्रद्धालु सिद्धनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर लौट रहे थे। इस दौरान चालक के नियंत्रण खोने से वाहन कुएं में गिर गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने बताया है कि ओमान के तट के पास भारतीय ध्वज वाली नौका विराट 1 का इंजन खराब होने से वो डूब गई। इस पर 14 भारतीय सवार थे, जिनमें से 11 भारतीयों को बचा लिया गया है, जबकि 3 अन्य को बचाने के प्रयास जारी हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने मेडिकल के स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए दोबारा हो रही परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। इन्हें NTA की वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से होगी। ब्रिटेन के बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 171 रन का लक्ष्य दिया है। स्मृति मंधाना ने 68 रन की पारी खेली। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 36 और ऋचा घोष ने बनाए 34 रन। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में रोगों से बचाव और स्वस्थ जीवन के लिए योग के लाभ विषय पर एक परिचर्चा प्रसारित करेगा। योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर परिचर्चा में भाग लेंगे। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नीस के ऐतिहासिक विला कैरिलोस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच प्रमुख क्षेत्रों में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर खासतौर से चर्चा। दोनों नेताओं ने भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक वाहन के कुएं में गिरने से 8 श्रद्धालुओं की मौत। ओमान तट के पास एक जहाज के इंजन में खराबी आने के बाद भारतीय चालक दल के सभी 14 सदस्यों को बचाया गया। और भारत ने ब्रिटेन के बर्मिंघम में ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप मैच में पाकिस्तान को दिया 171 रन का लक्ष्य। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi and French President Emmanuel Macron hold delegation-level talks at historic Villa Carolos at Nice. Focus on expanding special global strategic partnership between two countries across key sectors. Both leaders jointly inaugurate Bharat Innovates event at Palada Expositions. India's space economy poised to grow from $9 billion to $45 billion in the next decade. In Maharashtra, 8 pilgrims die as vehicle falls in well in Solapur. All 14 Indian crew members rescued from a vessel off Oman coast after engine failure. And in cricket, India set a target of 171 runs for Pakistan in the group stage match of ICC Women's T20 World Cup in Birmingham. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi and French President Emmanuel Macron held delegation-level talks at historic Villa Carolos at Nice in France. The discussions between two sides focused on expanding the special global strategic partnership between two countries across key sectors including defence, technology and trade. Prime Minister Modi was accompanied by the National Security Advisor Ajit Doval, External Affairs Minister S. Jaishankar, Foreign Secretary Vikram Misri and senior officials. President Macron was accompanied by French Minister for Europe and Foreign Affairs Jean-Noël Barrot and other senior officials. The two leaders also interacted during a walk-and-talk session at Villa Carolos. Earlier, Prime Minister Modi and French President Macron jointly inaugurated Bharat Innovates event at Palada Expositions at Nice in France today. The landmark initiative showcases India's rapidly expanding innovation and startup ecosystem. The flagship event being held under the India-France Year of Innovation brings together over 120 Indian startups and leading investors, technology leaders, and premier educational institutions from across the globe. It features innovations across 13 key sectors, including advanced computing, semiconductors, artificial intelligence, clean energy, and others. Speaking on the occasion, Prime Minister Modi highlighted India's startup revolution by saying that the country's youth are developing solutions for global challenges.

0: ये आकाशवाणी है। रवि वास्त्रीय अखिल भारतीय संगीत सभा के आज रात के प्रसारण में हम आपके लिए प्रस्तुत करने जा रहे हैं श्री जे एस श्रीराम का गायन। आज रात के इस प्रसारण में श्री जे एस श्रीराम के साथ संगत कर रहे हैं वायलिन पर वीएसपी गायत्री सिवानी, मृदंगम पर विद्वान पेरवली जय भास्कर और घटम पर श्री एम चंद्रकांत।
1: दिस इज आकाशवाणी। In tonight's broadcast of Ravi Vasariya Akhil Bharatiya Sangeet Sabha, we bring you a vocal recital by Sri J.S. Sriram. He is accompanied on violin by V.S.P. Gayatri Sivani, on mridangam by Vidwan Peravali Jayabhaskar, and on ghatam by Sri M. Chandrakant.
0: Sri J.S. Sriram एक प्रतिभाशाली कर्नाटक शास्त्रीय गायक हैं और आकाशवाणी के ए ग्रेड कलाकार हैं। वे अपने आकर्षक और अभिव्यंजक शैली के लिए सुप्रसिद्ध हैं। ये प्रख्यात संगीतज्ञों के परिवार में पैदा हुए हैं। इन्होंने अपनी माँ श्रीमती जे चिद्रूपा लक्ष्मी जी की प्रेरणा से संगीत का अभ्यास प्रारंभ किया और बाद में विद्वान द्वारम सत्यनारायण राव और विद्वान आखेला मल्लिकार्जुन शर्मा जी के मार्गदर्शन में गायन में आगे बढ़े। श्री सूर्वारम प्रताप रेड्डी तेलुगु विश्वविद्यालय में एमए संगीत में स्वर्ण पदक हासिल करके अब ये वही संगीत में शोध कार्य कर रहे हैं। ये कर्नाटक संगीत के साथ साथ नामसन कीर्तन में भी माहिर हैं और देश विदेश में मुख्य त्योहारों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। एक समर्पित अध्यापक बनकर उन्होंने कई विद्यार्थियों को संगीत प्रदर्शन के लिए प्रशिक्षित किया है और आप ललित कलाओं को बढ़ावा देने वाली संप्रदाय जैसी लाभ निरपेक्ष संस्था में भी स्वच्छंद सेवारत हैं।
1: श्री जे एस श्रीराम इज अ वर्सटाइल कर्नाटिक वोकलिस्ट एंड एन ए ग्रेड आर्टिस्ट विद ऑल इंडिया रेडियो। ही इज नोन फॉर हिज एक्सप्रेसिव एंड डायनामिक स्टाइल ऑफ सिंगिंग। ही हेल्स फ्रॉम अ डिस्टिंग्विश्ड म्यूजिकल फैमिली। श्रीराम वॉज इनिशिएटेड इन टू म्यूजिक बाई हिज मदर श्रीमती जे चिद्रूप लक्ष्मी। Later, trained under Vidwan Dwaram Satyanarayan Rao and Laya exponent Vidwan Akella Mallikarjuna Sharma. He is a MA Music Gold Medalist from Sri Suravaram Prataparedi Telugu University, Hyderabad, where he is currently pursuing his PhD in music. Equally adept at Carnatic vocal concerts and Nama Sankirtanas, he performs at major festivals in India and abroad. As a dedicated teacher, he has trained many students to concert level. He also volunteers with Sampradaya, a non-profit organization promoting fine arts.
0: Shri J. Shri Ram apne gayan ka aarambh Balaji Peta Venkata Ramana Bhagwatar ki ek kriti se kar rahe hain jo raag lalita tatha aadi taal mein nibadh hai.
1: Shri J. Shri Ram begins his vocal recital with a composition of Valaji Peta Venkata Ramana Bhagavatar in the rag Lalita set to Aditala.

0: अब आप सुनेंगे श्याम शास्त्री की एक कृति जो राग पूर्वी कल्याणी तथा विलोम चापू ताल में निबद्ध है।
1: You will now listen to a composition of Shyama Shastri in the rag Purvi Kalyani set to Viloma Chapu Taal.

0: श्री जी श्री राम अपने गायन का समापन त्यागराज की एक कृति से कर रहे हैं जो राग शंकरावर्णम तथा आदि ताल में निबद्ध है।
1: श्री जे एस श्री राम कंक्लूड्स हिज वोकल रिसाइटल विद अ कॉम्पोजिशन ऑफ त्यागराजा इन द राग शंकराभरणम सेट टू आदिताल।

0: ये था तन्यावर्तनम, जिसे मृदंगम पर विद्वान पीरवली जयभास्कर और घटम पर श्री एम चंद्रकांत ने प्रस्तुत किया।
1: दैट वॉज तन्यावर्तनम प्लेड ऑन मृदंगम बाई विद्वान पीरवली जयभास्कर एंड ऑन घटम बाई श्री एम चंद्रकांत।
0: इसी के साथ आज की अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा में श्री जे एस श्री राम का गायन अब संपन्न होता है। आपके साथ संगत करने वाले कलाकार थे वायलिन पर वीएसवी गायत्री शिवानी, मृदंगम पर विद्वान पीरवली जयभास्कर और घटम पर श्री एम चंद्रकांत। ये संगीत कार्यक्रम रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा के लिए आकाशवाणी हैदराबाद के स्टूडियोज में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र द्वारा प्रसारित हुआ।
1: विद दैट वी कंक्लूड द वोकल रिसाइटल बाय श्री जे एस श्रीराम इन द ब्रॉडकास्ट ऑफ रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। ही वॉज अकंपनीड ऑन वायलिन बाय वीएसपी गायत्री शिवानी, ऑन मृदंगम बाय विद्वान पीरवली जयभास्कर एंड ऑन घटम बाय श्री एम चंद्रकांत। दिस कॉन्सर्ट वॉज रिकॉर्ड

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिश्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। राष्ट्रपति मैक्रों के साथ फ्रांस के यूरोप और विदेश मामलों के मंत्री जीन नोएल बैरोट और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। दोनों नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आज नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। 3 दिन तक के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक शामिल होंगे। इनमें 120 असाधारण स्टार्टअप, 20 से ज्यादा उत्कृष्टता केंद्र और 13 महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकीय स्तंभ शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच एक सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तनकारियों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर सृजित हो रहे हैं।
1: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
0: इस अवसर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उभरने की प्रशंसा की। विदेश मंत्रालय ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा पर विशेष संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता और भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में प्रगति पर चर्चा की गई। सम्मेलन को विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले 10 सालों में 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से उन्होंने कहा कि ये वृद्धि नीतिगत सुधारों, बढ़ती निजी भागीदारी और तेजी से बढ़ रहे नवाचार परितंत्र को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया, डिजिटल हेल्थ, डीप ऑपरेशन ओशन मिशन और गगनयान जैसे कार्यक्रमों ने विज्ञान और नवाचार को भारत की विकास यात्रा के केंद्र में स्थापित करने में मदद की है। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में आज दोपहर एक पिकअप वाहन दुर्घटना में बच्चों सहित 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। यह हादसा मालचिरस तालुका में महसवाड़ पंडरपुर मार्ग पर तांडुलवाड़ी के पास हुआ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल के स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए दोबारा हो रही परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। इसे एनटीए की वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से होनी है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने बताया है कि ओमान के तट के पास भारतीय ध्वज वाली नौका विराट 1 इंजन खराब होने के कारण डूब गई। इस पर सवार सभी 14